इतिहास के सफ़ों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बहुत छोटी सी सुई के छेद में एक मोटा सा रस्सा पिरोने की कोशिश की है? सुई का नाका इतना बारीक होता है कि उसमें केवल एक पतला सीधा और रेशमी धागा ही आर पार निकल सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति उस बारीक छेद में एक बड़ा भारी और अकड़ा हुआ रस्सा ढूंढने की कोशिश करें तो वह सुबह से शाम तक पसीना बहाता रहेगा, लेकिन वह रस्सा उस छेद से कभी पार नहीं होगा। उस पार जाने की एकमात्र शर्त यह है कि धागे को बिल्कुल महीन, हल्का और सीधा होना पड़ेगा। अध्यात्म की दुनिया में भी भक्ति का जो प्रवेश द्वार है, वह भी ठीक उस सुई के नाके से भी कई गुना ज़्यादा बारीक है। लेकिन हम उस द्वार पर अपने अहंकार, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान का भारी भरकम बोझ लाद कर पहुँचना चाहते हैं। कबीर साहब आज हमें इसी नासमझी का आईना दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला सूत्र। भक्ति द्वारा सांकड़ा राई दसवे भाई, भक्ति द्वारा सांकड़ा राई दसवे भाई, मन तो मंगल वही रहा क्यों करी सके समाई। भक्ति द्वारा सांकड़ा राई दसवे भाई,

0: बाय।
1: श्रोताओं, कबीर साहब भक्ति के आंतरिक नियम को प्रकट करते हुए कहते हैं, भगति द्वारा सांकड़ा। यह जो प्रभु प्रेम और आत्म साक्षात्कार का भक्ति द्वारा यानी भक्ति का द्वार है, यह अत्यंत सांकड़ा यानी बहुत ही संकरा और बारीक है। कितना संकरा? राई दसवें भाई। जैसे सरसों के एक छोटे से राई के दाने को भी 10 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो उसका जो दसवां हिस्सा होता है, यह मार्ग उससे भी ज़्यादा बारीक और सूक्ष्म है। वहाँ अहंकार के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। लेकिन उस संकरे द्वार पर हमारा मन किस रूप में खड़ा है, अगली पंक्ति में कबीर इसका कड़वा सच बताते हैं। मन तो मंगल वही रहा। यह जो तुम्हारा मन है, यह वासनाओं और अपनी उपलब्धियों पर मैं के घमंड से फूलकर मंगल यानी एक विशालकाय मदमस्त हाथी बन चुका है। क्यों करी सके समाय? अब तुम ही बताओ कि राई के दाने से भी बारीक छेद में एक मतवाला हाथी क्यों करी समाय, यानी कैसे समा सकता है, कैसे प्रवेश कर सकता है, जब तक यह हाथी जैसा भारी मन पिघल कर सूक्ष्म धागा नहीं बनेगा, तब तक भक्ति के उस पार पहुंचना असंभव है। यह दोहा अहंशून्यता और शरणागति का महासूत्र है। उपनिषदों में भी उस परम तत्व के मार्ग को शुरस्य धारा निशिता दुरत्तया, यानी कि उस्तरे की तिखी धार के समान बारीक कहा गया है। संसार में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को अपना प्रभाव, पद और अहंकार बड़ा करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा के मार्ग पर चलने का नियम बिल्कुल उल्टा है। यहाँ जो जितना छोटा, शून्य और विनम्र होता है, वही सबसे आगे निकलता है। मंगल प्रतीक है हमारी उस झूठी अहंता का, जो कहते हैं कि मैं कुछ हूँ। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक साधक अपनी इस भारी भरकम अहंता को विसर्जित करके बिल्कुल निर्मल, निराभिमान और शून्य नहीं हो जाता, तब तक उस परम आनंद के धाम में कदम भी नहीं रख सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद के भीतर झांक कर देखिए कि हम विधाता के दरबार में क्या लेकर जा रहे हैं। क्या हम अपनी पूजा में, अपने दान में या अपनी प्रार्थना में अपने अहंकार, अपनी शान और अपने बड़प्पन का हाथी साथ लेकर नहीं जाते? हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े साधक या दानी हैं। यही भारीपन हमें परमात्मा से दूर कर देता है। आज कोशिश कीजिए अपने इस मंगल यानी भारी मन को विनम्रता की चक्की में पीस कर हल्का करने की। अपनी मैं को विसर्जित कर दीजिए। उस राम नाम के सामने बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह निष्कपट और सरल बन जाइए। जब आपका मन अहंकार के बोझ से मुक्त होकर राई के दाने से भी सूक्ष्म हो जाएगा, तो भक्ति के उस संकरे द्वार से आपका प्रवेश इतनी सहजता से होगा कि आप एक ही पल में उस परम शांति और परमानंद में समा जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब अपने हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशी के उस लेवल को देखना शुरू किया तो फिर अवेयर होना शुरू हो गए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मेरी खुशी को मुझसे छीन लेते हैं या मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। अब तो हम भाषा को भी देख कर बात करते हैं तो बहुत कुछ निकलता है सामने और उन सभी को एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि पूरी श्रृंखला में लेते जाएं। तो आज भी हम बात करेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुजर चुकी होती हैं, हमारा पास्ट हम छोड़ ही नहीं पाते, चाहे हम कितनी बार भी कह दें कि मैं सब भूल गई हूँ, सब भूला है, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आती है जो उससे सिमिलर हो या कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो ट्रिगर हो जाता है और फिर उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें जो मेरी खुशी को या मैं खुश नहीं रह पाता, तो क्यों होता है ऐसे और उसे सॉल्व कैसे करना है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जैसे कि पिछली बार बात की थी एक्सपेक्टेशंस, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए थे, ऐसे ही अगर हम पास्ट को देखते हैं क्यों है ऐसा, हम कितना, अभी मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर रही हूँ, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक चलता जा रहा है, आई डोंट इवन रियलाइज कि आई रिमेंबर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, बट देन व्हेन इट कम्स it just takes over.
1: And what happens then after that?
0: Then the whole day is gone.
1: Whole day is gone.
0: No, I'm saying like it happens with a lot of.
1: Then the past becomes my present. Yeah. See, हम उसको कहते past हैं, हम बार-बार कहते वो जो बीत गया, अब जो बीत गया, लेकिन जितनी बार उसको याद करते हैं, तो वो past न रहकर, वो अब मेरा वर्तमान बन जाता, क्योंकि जैसे आपने कहा, जैसे ही वो past याद आया, तो मेरा आज का दिन भी. सपोज वो पास्ट में कुछ ऐसी बात हुई थी जब हम दर्द में चले गए थे, आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन अब मैं जितनी बार वो मुझे वो पास्ट याद आता, एवरी टाइम आई गो इन टू पेन, सो एक्चुअली इट्स नो मोर अबाउट द पास्ट बट नाउ इट्स इज माई प्रेजेंट. तो ये पास्ट भी एक कॉन्सेप्ट है, एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन पास्ट तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं ना, पास्ट मतलब जो बीत गया, लेकिन अब जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट रियली नथिंग टू डू विद द पास्ट, इट्स एक्चुअली बिकम माय प्रेजेंट. ये पूरी श्रृंखला में हमने यही देखा कि हम खुशी कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वस्तुओं में ढूंढा, परिस्थितियों में ढूंढा, लोगों से ढूंढा कि आपसे मिल जाए, और जो बहुत बड़ी चीज है जहाँ हम ढूंढते वो जो बीत गया या वो जो होने वाला है. सो आई लुक फॉर हैप्पीनेस ईदर इन द पास्ट और आई एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन द फ्यूचर. आज साइकोलॉजिस्ट भी बताते कि मोस्ट ऑफ अस, ऑफकोर्स ये हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अस हम 80-20 के रेशियो से चलते हैं कि 80% समय हम बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं एंड 20% ऑफ द टाइम हम आने वाली बातों के बारे में सोचते हैं. तो वेरी रेयर, ये सुनने में ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बट इसकी भी अवेयरनेस चाहिए. हमने कभी हम अवेयर नहीं है क्योंकि हम अपनी थॉट्स के अवेयर नहीं, हमें यही नहीं पता सारा दिन कौन से थॉट क्रिएट कर रहे. तो सेकंड स्टेप ये अवेयर होना कि किस बारे में थॉट क्रिएट कर रहे, वो तो होता ही नहीं, लेकिन एक दिन भी अगर आप अपने थॉट्स को धीरे धीरे चेक करें, सो यू विल सी ईदर वी आर हियर, बीता हुआ पल वो हो सकता है अभी जो लास्ट मिनट पास हुआ, या ऑफ कोर्स 10-20 साल पुराने वाली बात, या फिर हम सोच रहे हैं
0: आगे
1: आने वाले पल, आने वाले नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हियर आई एम इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक मोमेंट, एक एक सिचुएशन, एक एक इवेंट जो पास होता जा रहा है, इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं या तो पास्ट इवेंट के बारे में सोच रही हूँ या फिर आने वाले मोमेंट के बारे में. जितनी देर मैंने आने वाले मोमेंट के बारे में सोचा, मेरा ये प्रेजेंट वाला बीत गया, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, उतनी देर में मैं यहाँ से हिलकर यहाँ पहुँच गई, और यहाँ आने के बाद नाउ आई थिंक ऑफ दैट पास्ट मोमेंट. इट्स लाइक दिस बॉक्स, देयर आर 3 बॉक्सेस, ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अभी मैं प्रेजेंट वाले बॉक्स में खड़ी हूँ, लेकिन मैं या तो पास्ट वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ या फिर फ्यूचर वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ. इधर खड़े खड़े मैंने इसके बारे में सोचा, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, तो मैं इस बॉक्स में आ गई ना. सपोज दिस इज 10 AM, दिस इज 10:01 PM. एट 10:01 आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 10 AM
0: कि वहां तब क्या हुआ था.
1: यू सी, सो एक्चुअली क्या हो रहा है, 10:01, 10:02, 10:03, एक्चुअली हो क्या रहा है, हर पल हम सोच तो रहे हैं, लेकिन उस पल के बारे में सोच रहे हैं जो एक्चुअली क्रॉस हो गया या जो एक्चुअली आने वाला है. एंड इन द प्रोसेस हम वो वाले मोमेंट को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ दैट मोमेंट. सो बेसिकली एट एवरी मोमेंट वी आर थिंकिंग अबाउट दैट व्हिच इज नॉट इन माय कंट्रोल. जो हम बहुत बार ये फीलिंग जनरेट,
0: तो वो जो प्लान भी बनाते हैं हम कि दिन भर, वो भी एक संभावना ही रखनी चाहिए फिर.
1: और क्या है ही संभावना. डू यू थिंक इट ऑलवेज गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान. लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता कि अगर हम हर पल को उस पल के लिए बिताएं, उस पल में जिए, अगर आप इस पल में हैं, एक्चुअली देयर इज स्टेबिलिटी. लेकिन जैसे ही आप इस पल को छोड़कर दो उन चीजों पर गए जो आपके कंट्रोल में नहीं है. देखो मन जब भी कोई
0: लेकिन
1: ऐसी
0: अगर इसी पल कुछ बहुत ऐसा हो रहा है, यू नो, मेरे सामने कुछ ऐसा सा आग लग गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो मेरी स्टेबिलिटी
1: डिस्टर्ब नहीं होगी. अगर ये लगा भी है और अगर आपका पूरा फोकस इस पर है कि मुझे इसको हैंडल करना है, डिस्टर्ब नहीं होगा. लेकिन अगर मन में ये होगा अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा, वी हैव ऑलरेडी गॉन इन टू द नेक्स्ट मोमेंट.
0: यस,
1: we already anticipate the more losses. इस moment में ताकत है हमारे अंदर situation को face करने की. लेकिन वो ताकत कहाँ खत्म होती, जब हम अगले पल के बारे में fear create करना शुरू कर देते हैं. तो ये एक, जब हम meditation करते हैं, why does it benefit? Meditation हमें help करता है अपने mind की, you know, speed को, thoughts की speed को slow down करने के लिए, अवेयर होने के लिए. और मेडिटेशन हमें ये सिखाता कि उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना जिनके ऊपर कंट्रोल
0: किया
1: है. इफ एनी वन ट्राइज टू डू समथिंग विच इज़ नॉट इन देयर कंट्रोल, तो रिजल्ट क्या होगा, आपको कैसा फील होगा. तो पास्ट के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में सोचना, दोनों केस में हम ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मन की स्थिति कैसे होगी. इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट डिस्टर्ब. लेकिन दिस रिक्वायर्स डीप अवेयरनेस कि हम कैसे उस पल में रहें. एंड उस पल में हम हैं या नहीं हैं, उसका साइन है स्टेबिलिटी. जैसे ही मन ऐसे ऐसे होने लगा, अब क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि क्या थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो लेट्स गो बैकवर्ड्स. जैसे ही मन डिस्टर्ब हो,
0: लुक एट,
1: चेक हो जाए किस बारे में सोच रहे थे, कौन सी पास्ट की बात या फिर कौन सी फ्यूचर की बात. और फिर मन को प्यार से अगर दोनों जगह से हटाकर जस्ट कम टू द प्रेजेंट मोमेंट. पहले हम पास्ट को देखते कि अगर पास्ट को बारे में सोचने से, क्योंकि बहुत बार हमें ये कहा जाता या हमारा भी बिलीफ सिस्टम ये बना कि पास्ट को याद तो रखना चाहिए ना, पास्ट को याद
0: से हम सीखते
1: सीखते हैं.
0: हिस्ट्री रिपीट्स
1: इटसेल्फ. तो पास्ट को हमें याद रखना है. अगर पास्ट को याद रखेंगे तो उससे शिक्षा मिलती है. पास्ट को याद रखेंगे तो फिर धोखा नहीं खाएंगे. पास्ट में धोखा खाया था, भूलना मत उसको, याद रखना ताकि अगली बार धोखा नहीं खाएंगे. दीज आर आवर बिलीफ सिस्टम्स रिलेटेड टू द पास्ट. अब इन बिलीफ सिस्टम्स को अगर हम थोड़ा सा चेक करें, पहली बात, जब हम पास्ट को याद कर रहे हैं, याद मतलब रिवाइज कर रहे हैं फिर से, तो हम एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. लेट्स टेक द पास्ट व्हिच इज नॉट वेरी प्लेजेंट, देन वी विल टेक द पास्ट व्हिच इज प्लेजेंट आल्सो. अनप्लेजेंट पास्ट, एक छोटी सी बात हो सकती है, किसी ने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की, या एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, किसी ने मुझे रिश्तों में धोखा दिया. पास्ट कुड बी समवन लेफ्ट from the family. So it could be small से लेके बहुत बड़ी बात तक. अब जब हम वो past को revise करते हैं मन से या even अपनी conversation में, क्योंकि हमारी conversations में भी बहुत बार बात जो होती वो पीछे हुई हुई बातों के बारे में होती.
0: Actually, वो हमेशा ही हमारा present बनता जा रहा है. जितना ज्यादा हम
1: absolutely. Yes. But अब क्या हो रहा है, जैसे ही I am talking to you, let's say for example मैं आपसे बात कर रही हूँ about something which has happened with me. फिर आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा, उनको लगता, आपको लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन देखो उन. आई एम रिवाइजिंग दैट होल सीन ऑफ द पास्ट टू यू. एंड बोलते बोलते अंदर भी सोच रही हूँ और आपको भी सुना रही हूँ. और बोलते बोलते जो मेरे अंदर वो एंगर, वो हर्ट, वो जो डिजेक्शन, ये सारे जो इमोशंस क्रिएट होते, दिस इज अ साइन कि मैं अभी भी उनके वो बिहेवियर को, उनके वो वर्ड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूं, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था. दिस इज माई बिलीफ सिस्टम. दिस कम्स आउट इन माई कॉन्वर्सेशन. उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल टू थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल. वन पर्सन, मैं कितना भी बोलूँ कि उनको ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल. सेकेंड, वो सीन तो बहुत पहले पास हो चुका है, अब उसके बारे में सोचना या बोलना कि वो नहीं करना चाहिए था, हाउ फ्यूटाइल इज दैट और हाउ यूजफुल इज.
0: लेकिन सो मेनी टाइम्स वी से कि निकलने तो दो कम से कम, यू नो, इतना जो भरा हुआ है, चाहे वो गुस्सा है या एंगर है, मतलब ठीक है अब आगे तो मुझे अपने ऊपर चेक करना है. आगे के लिए तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ना लोगों को चेंज कर सकती हूँ ना सिचुएशंस को, लेकिन पीछे के लिए जो
1: लेकिन व्हाट वी डोंट रियलाइज इज, जैसे हमने कहा स्टेबिलिटी ऑलरेडी है. आप अभी एक्सपीरियंस करो, आप बिल्कुल स्टेबल हो, मन बिल्कुल शांत है. अब लो एक पास्ट के इंसिडेंट को, कोई भी, और उसको डिस्कस करना शुरू करो, तो क्या होगा?
0: वेरी ट्रू. यू नो, लाइक अगर वो बड़ा डिटैच्ड वाला हो तब भी
1: you know, कहीं बहुत वो ऐसे ऐसे. अब हमें ये याद नहीं रहता है और हम अपनी ही खुशी को, अपनी ही स्टेबिलिटी को हम खुद खत्म करते हैं. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वी से व्हाई आर वी सो डिप्लीटेड. अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को ये चेक करें कि पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में डिस्कस करना, वर्णन करना, आई एम ओनली डिप्लीटिंग माई एनर्जी, एटलीस्ट आई विल स्टार्ट बींग केयरफुल. आई जस्ट नीड टू बी केयरफुल. अभी क्या हो रहा है, क्योंकि शायद हमें अवेयरनेस नहीं है कि इससे मेरा कितना नुकसान होता है, हम उसको बहुत कैजुअली करते जाते. एक पास्ट इंसिडेंट हो गया, किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया. अब मैं दिन में 4 लोगों को फोन करती हूँ, वो डिस्कस करती हूँ, वो शेयर करती हूँ. वट एम आई डूइंग? द सीन इज लॉन्ग पास्ट ओवर. लेकिन जितनी बार आई डिस्कस, आई एम ट्राइंग टू से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. What am I trying to say? उनको मेरे अनुसार करना चाहिए था. Futile. अब कई बार हम कहते लेकिन इससे मुझे सीखने को मिलता है. If I keep reminding myself, तो मुझे सीखने को मिलता. तो हमें क्या सीखने को मिलता है इससे? That also we need. सीखने को जरूर मिलता, but provided हमने उसको right perspective में लिया है. अगर मेरे साथ कोई situation हुई जिससे उस मोमेंट, चाहे वो कल था या 10 साल पहले था, आई एक्सपीरियंस्ड पेन, आई एक्सपीरियंस्ड हर्ट, बहुत कुछ हुआ, आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ लो. अब उससे मुझे क्या सीखने को मिला? अगर आज भी मैं कहती कि मैंने उस बात को याद रखा है, उन लोगों को याद रखा है, उन लोगों ने जो एक एक चीज कही वो मैंने याद रखी है, इससे मुझे सीखने को मिला. क्या सीखने को मिला? कि अगली बार जब वो लोग मिलेंगे तो मुझे उनसे ध्यान से रहना. तो ये कोई मेरी शिक्षा नहीं हुई, ये मैंने किसके बारे में एक्चुअली सीखने की कोशिश की? आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट देम, दैट्स नॉट लर्निंग. एंड आई एम ओनली क्रिएटिंग, जो पास्ट में हर्ट हुआ, आई एम एक्चुअली यूजिंग इट टू स्पॉइल माय प्रेजेंट एंड माय फ्यूचर.
0: कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि वो कभी भी आके मुझे मैनिपुलेट कर पाते हैं, यू नो, सो मे बी इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ जब मैं होती हूँ, सी अगेन देयर मे बी देयर पर्सनैलिटी और वट एवर, और माई पर्सनैलिटी बिकम्स वीकर, वट एवर.
1: सो नो नो, इट्स नॉट वट एवर, इट्स टोटली टू डिफरेंट थिंग्स. अगर हम ये प्रोसेस ले रहे हैं वो मुझे मैन्युपुलेट कर पाते हैं, इससे मैंने कुछ नहीं सीखा, इससे मैं उन्हीं के बारे में चिंतन कर रही हूँ, विच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम.
0: मुझे क्यों कर पाते हैं ये देखना,
1: दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट. मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है? मौसम बदल रहा है तो मौसम के बारे में चिंतन करना नहीं, मुझे अपनी प्रोटेक्शन क्या करनी. दैट्स व्हाई वी से राजयोगा मींस ब्रिंग द फोकस टू योरसेल्फ. वो ऐसे हैं वो, एंड आई थिंक आई एम लर्निंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. अगर मैं औरों के बारे में, औरों के व्यवहार के बारे में सोचती रहूं तो मैं बच जाऊंगी उससे? Not at all. I think, you know, if I you know what I think? If I understand them well, then I will be safe. No way. Unless I understand myself and I teach myself and I learn for myself कि मुझे कैसे respond करना है, क्योंकि वो तो मेरे control में नहीं है, एक ही है जो मेरे control में है. तो वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, it's not important. मुझे कैसे respond करना है, मुझे अपने सुरक्षा कैसे करनी है, और सुरक्षा भी क्या कि मैं हर्ट नहीं हूँ. वो ठीक से अगली बार बात करे ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगली बार मैं हर्ट नहीं हूँ ये मेरे कंट्रोल में. अब आज मेरे लिए क्या लर्निंग होनी चाहिए? एक लर्निंग हो सकती है कि ये तो ठीक से बात ही नहीं करती हैं, इनसे तो दूर ही, इनसे मैंने ना बहुत संभल के चलना है, दिस इज आवर वोकैबुलरी. तो हम उनके बारे में सोच रहे हैं अगेन कि इनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है, ये कहीं भी ऐसा कुछ कह देते हैं बिकॉज ऑफ विच आई गेट हर्ट. नाउ स्पिरिचुअलिटी मीन्स द पर्सपेक्टिव शुड बी कि कल मैं हर्ट हुई थी, आज मुझे ये ध्यान रखना है सिर्फ कि मुझे हर्ट. सी ब्रिंग द फोकस टू माई सेल्फ. आने वाली हैं बहुत सारी बातें आने वाली हैं, आप अगर कंट्रोल उनको करने की कोशिश करोगे यू विल जस्ट कोलैप्स. अच्छा कल आपने ठीक से नहीं बात की, आज आपने ठीक से बात कर ली, लेकिन आज कोई और ठीक से नहीं बात कर, कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे, कितने लोगों को समझाएंगे कि ये राइट तरीका है बात करने का. आई एक्सपेक्ट यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, आई एक्सपेक्ट, हाउ मेनी पीपल कैन आई कंट्रोल द वर्ल्ड. सिचुएशन आई थी, मुझ पर डैमेज हुआ, मैं आगे बढ़ी, लेकिन मैंने उस डैमेज को, उस हर्ट को हील नहीं किया, सो आई हैवंट लर्नड एनीथिंग. वो मुझे बिटर दर्द में ही छोड़ गई. अब हम कहते कि ये मुझे याद रखना है, लाइक यू सेड हिस्ट्री रिपीट्स. अब हिस्ट्री रिपीट्स क्या होता, जितनी बार हम उस बात को याद करते, वो हुई पहले, लेकिन अब मैं जितनी बार, आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, हम बीती हुई बातों के बारे में सोच के अभी भी रो सकते हैं. यू नो दैट वी कैन जस्ट हैव लाइक दैट, व्हाट हैपेंड, बात तो है ही नहीं, वो लोग भी नहीं है, वो सीन भी नहीं है, हाउ कम आई एम एबल टू क्राई राइट नाउ हियर, बिकॉज वो बात यहाँ क्रिएट होती, बाहर नहीं होती. तो पास्ट को हम जितनी बार क्रिएट करते हैं, हम पास्ट को अपना प्रेजेंट बना लेते हैं, और ये प्रेजेंट फिर मेरे फ्यूचर पर अफेक्ट करता. तो जो हम कहते हैं कि पास्ट को अगर याद रखेंगे तो फिर वो फिर से नहीं होगा, यू नो व्हाट वी नॉर्मली से, याद रखोगे तो फिर से वो बात नहीं होगी. एक्चुअली जितना याद रखोगे
0: उतना बार बार
1: वो बार बार होता जाएगा. यू सी आई एवरी टाइम आई मीट यू आई एम सेइंग ये मुझे इंसल्ट करती है, ये मुझे इंसल्ट, तो एवरी टाइम व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप. And every time I get hurt very, very easily. अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि past repeat ना हो, तो actually उसको याद नहीं रखना होगा, लेकिन past repeat ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: We'll have to repeat,
1: you will have
0: delete.
1: To forget it totally. Forgetting the past is the only guarantee कि past repeat ना होगा, क्योंकि जितनी बार वो यहाँ repeat, यहाँ हो नहीं हो we don't know, लेकिन जितनी बार भी वो यहाँ repeat होता, वो already repeat हो चुका. जैसे आपने शुरू में ही कहा, past की कोई बात याद आई और मेरा आज पूरा दिन खराब हुआ, तो repeat हो गया ना, the past has repeated itself. अगर suppose मैं hurt हुई थी तभी या dejected feel किया, अब मैं जितनी बार उसको repeat करती हूँ, I again experience hurt, अगेन एक्सपीरियंस इंसल्ट, तो मेरा यहाँ का संस्कार, मेरा यहाँ का थॉट पैटर्न, वो और भी ज़्यादा कड़क, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया. तो सिचुएशन रिपीट नहीं होती, लेकिन थॉट पैटर्न रिपीट होता जाता, एंड देन एज विल बी माई थॉट्स, सो विल बी माई डेस्टिनी. तो जो थॉट्स फिर मैं क्रिएट करूँगी, फिर मैं उन लोगों के सामने मिलूँगी, फिर उनको वो एनर्जी मैं भेजूँगी, वो एनर्जी मेरे थ्रू जाएगी, वो एनर्जी मुझे वापस आएगी, एंड देन आई से देखा उन्होंने फिर से वो किया, उन्होंने वो नहीं किया, मैंने ऑलरेडी वो पास्ट को लिया, फिर से क्रिएट किया, वो एनर्जी भेजी.
0: एक्चुअली मैं वेट कर रही होती हूँ कि ये कब होगा और कब.
1: आई रीअफर्म माय बिलीफ सिस्टर.
0: और सीन के सीन पूरे वैसे के वैसे ही होते. हमारे कई बार मतलब रिलेशनशिप्स में जो फाइट्स होती हैं, ब्रदर सिस्टर्स की भी जो फाइट है, उसमें वही शब्द, सेम सिनेरियो भी वही आता है, शब्द भी वही आते हैं,
1: क्योंकि वो बहुत बार यहाँ चलता है
0: और हमें पता होता है कि इसके बाद आगे भी क्या होगा,
1: क्योंकि इतनी बार वो टेप को इतनी बार रिवाइंड कर लिया होता है कि जैसे इट्स लाइक अ मूवी. अगर आपके पास कोई मूवी की डीवीडी है और आपने वो मूवी 8-10 बार देख ली है, अब 11वीं बार चलाओ उस मूवी को,
0: कई बार तो रुक जाती है मशीन.
1: नहीं,
0: हम तो
1: नो इट ना, आपको हर सीन और हर डायलॉग पहले ही पता है. सिमिलरली एक पर्टिकुलर सीन हुआ, हम उसको बार बार, हम उस सीन, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम उस सीन को बार बार इधर क्रिएट करते, और फिर हम यहाँ भी नहीं क्रिएट करते, हम इतने सारे लोगों के साथ उसको डिस्कस करते, तो हमने वो सीन कितनी बार क्रिएट किया. तो वी हैव द पावर कि हम उस हर्ट वाले सीन को भी बार बार क्रिएट करते, जितनी बार क्रिएट करते हम उसको अपना प्रेजेंट बनाते, और जो हमारा प्रेजेंट बनेगा दैट विल देन इन्फ्लुएंस माय फ्यूचर. तो एक्चुअली अगर हम देखें तो पास्ट जितनी बार हम रिवाइज करते हैं उसको, इवन लाइक कल आपके साथ मेरा ये हुआ, जितनी बार मैं उसको रिवाइज करती हूँ इट विल ऑलवेज बी लिटिल लिटिल डिफरेंट. कुछ कुछ कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ एक रिविजन कर रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा तो वो चेंज होता जाएगा, उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा.
0: तो वो मेरा कलर भी तो उसमें ऐड होता जाएगा, मेरा अपना इमेजिनेशन.
1: मैं जितने लोगों के साथ बात करूंगी उस बारे में, मेरी इंटेंशन, मेरी भावना उसमें ऐड होती जाएगी. तो एक्चुअली हर बार जब हम रिपीट करते उसको, इट्स नॉट दैट आई एम रिपीटिंग द पास्ट, इट्स एवरी टाइम आई एम क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंट, बिकॉज एवरी टाइम आई रिपीट इट्स डिफरेंट फ्रॉम what
0: the original, yes,
1: it's different from the original. So if we look at it this way, to for past ka to koi concept hi nahi hai. Jo bita, jab usko dusri bar varnan kiya, wo exact nahi hota hai. To actually this is a new present. I'm not talking about the past.
0: Actually,
1: let's be in the present.
0: I made it a present, you know. So why should we make our present based on the past? You know, we can actually, हाँ, हमारी क्रिएटिविटी यहीं पे खत्म हो जाती है. लेकिन एक शिवानी बात ये रह गई कि past को हर्ट खत्म करने के लिए तो याद करना ही पड़ेगा, या वो हर्ट वहीं रह के छूट गया.
1: हर्ट खत्म होने के लिए अगर याद करेंगे तो वही बात हुई, जितनी बार याद करेंगे तो वो हर्ट उल्टा और क्रिएट होता. तो हम बहुत बार हमने सुना है कि पास्ट को भूल जाओ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे, फॉरगिव एंड फॉरगेट. तो हम कहते फॉरगिव किया, फॉरगेट नहीं होता मेरे से. तो जितनी बार फॉरगेट नहीं हो रहा, हम उसको रिक्रिएट करते. तो यस, इट मे साउंड डिफिकल्ट, इट इज लिटिल चैलेंजिंग, बट सोल्यूशन इज ओनली दैट कि हमें पास्ट को भूलना पड़ेगा. लेकिन अगर हम ऐसे ही पास्ट को भूलने की कोशिश करते, नहीं वो नहीं भूला जाता. देखो, घंटा पहले हुई बात वो भूल जाती, और 10 साल पहले हुई बात वो भूलती नहीं. कौन सी बात नहीं भूलती? जिसने यहाँ पर दर्द क्रिएट किया. तो जो हमें एफर्ट करना है वो ये नहीं कि मैं कैसे भूलूं, एफर्ट करना है कि वो जो दर्द मैंने क्रिएट किया उसको मैं हील कर दूं. दर्द हील हो जाएगा, वो बात याद नहीं रहेगी. इट्स लेस टू डू विद द सिचुएशन एंड विद द पीपल, इट्स मोर टू डू विद माय पेन. जब तक वो पेन खत्म नहीं होगा, और वो पेन तब खत्म होगा जब मैं उसको अपने ऊपर लूंगी कि उन्होंने जो किया सो किया, जो बोलना था सो बोला, मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना था, मेरा रिस्पॉन्स तो फिर भी मेरे हाथ में. तो अपने आप से उस तरह से बात करके, अपनी सेल्फ एस्टीम को उन पर नहीं डिपेंडेंट करके अपने हाथ में लेकर, जब हम अपने आप को हील कर लेते, देन पास्ट इज फॉरगॉटन. लेकिन जब तक वो हील नहीं होगा, एंड आप सोचे आई फॉरगेट द पास्ट, आई लेट गो, आई डिलीट, इट जस्ट कम्स बैक.
0: और एक्चुअली अगर हम देखें भी, हमें वो पास्ट याद भी क्यों आता है, क्योंकि जब हमारे प्रेजेंट में कोई पेन आती है, हमें एकदम से वो ट्रिगर होता है, अदरवाइज थोड़ा याद आ रहा
1: है. बट देन दैट मींस इट इज ऑन द टॉप लेयर ऑफ द माइंड. सी, अगर वो फिनिश हो गया, अगर वो हर्ट हील हो गई, देन इट्स ऑफ द डिस्क, इट्स नो मोर देयर. अब आपने कहा, अब जब भी पेन क्रिएट होता तब मुझे वो क्यों याद आता? क्योंकि वहां भी पेन है, यहाँ भी अभी पेन क्रिएट हुआ, तो क्या हुआ? वो तुरंत याद आया. लेकिन जब वो पेन आपका हील हो जाएगा, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, कोई झगड़ा हुआ फैमिली के अंदर, कोई यू नो बहुत भाई बहनों के बीच या हस्बैंड वाइफ, तो हम कहेंगे ये तो बात मुझे जीवन भर याद रहने वाली है. कई बार हम बहुत स्ट्रांगली कहते, मैं जीवन भर आपको फॉरगिव नहीं करूंगा. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला हूँ.
0: मैं आपको भी फॉरगिव नहीं करूंगा,
1: मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला हूँ. सो कितनी देर रहना है और कितनी जल्दी भूलना है, ये कैपेसिटी हमारी अपनी है. आपको चाहिए आप 1 साल दर्द में रहें, आप 10 साल रहें, या आप 10 मिनट में उसको फिनिश करें, जितना हम फिर अपने ऊपर वर्क करते वो टाइम गैप कम होता जाएगा. इट्स ऑल अबाउट जितना मैं अपने अंदर वो ताकत भरती जाऊं, वो टाइम जो मुझे लगेगा अपने आप को हील करने का वो कम होता जाएगा. जितना वो कम होता जाएगा, पास्ट विल बी देन फॉरगॉटन.
0: इनफैक्ट अमेजिंग है, लेकिन इसको अगेन हमें एक्सपेरिमेंट करके करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दर्द इतनी बार रिपीट हो चुके होते हैं कि वो लगते हैं कि वो ऐसे डिलीट कैसे होंगे. इनफैक्ट एक और बड़ा मेजर इशू है जिसको शायद हम अगली कड़ी में ज़्यादा ले पाएंगे, कि डेथ ऑफ माई वेरी नियर वन, दैट पेन, उसको तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक कौन सा ऐसा थॉट है जो, क्योंकि उसमें किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जा सकता, यू नो, कि कई बार तो मैं इस पे ये करके, ये दूसरे सिचुएशन या किसी के साथ, तो उस पे भी हम बात करना चाहेंगे अपनी अगली कड़ी में. तो अगर आपके पास कोई सवाल आता है, कोई मन में बात उठ रही है, कोई इसी से जुड़ी कोई और सजेशन भी है, या कोई और बातें हैं जो आपके हैप्पीनेस इंडेक्स को कम करती हैं या उसे स्टेबल नहीं रहने देती, आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. Awakening with Brahma Kumaris में आज बहुत बड़ी बात हमने आज चैलेंज की है, उसको समझा है, अब उस पर काम करना बाकी है. और ऐसे में मेडिटेशन जो है वो बहुत मदद करती है. सिस्टर शिवानी, कुछ लम्हा हम चाहेंगे कि उन पर रिफ्लेक्ट कर पाए कि कैसे वर्क करना है.
1: लेट्स सिट कंफर्टेबली. बहुत कुछ पकड़ कर रखा था आज तक, परिस्थितियां, लोगों के व्यवहार, जो आज दिन तक समझा, लोगों का दिया हुआ दर्द, ये सब कुछ मैंने पकड़ कर रखा था. और बार बार स्मृति में लाते ही मैं आज भी उस दर्द का अनुभव कर सकती. आज इस क्षण अपने आप से प्रतिज्ञा करते कि हम अब अपने आप को और दर्द नहीं देंगे. मेरे अंदर वो शक्ति है. आई एम दैट पावरफुल बींग विच कैन स्टे स्टेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर इज हैपनिंग आउटसाइड. दर्द मुझे कोई और नहीं देता, तो मैं खुद ही क्रिएट करती. जैसे ही ये स्मृति आती तो फिर फॉरगिव दूसरों को नहीं, लेकिन फॉरगिव अपने आप को, क्योंकि हमने खुद को दर्द दिया. आज अपने आप को ये याद दिलाएं कि अपने मन की स्थिति हमारे अपने हाथ में है. एंड वो सब जिन बातों को पकड़ के रखा था उन्हें छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा जब ये याद रहेगा कि उन्होंने दर्द नहीं दिया. आई कैन लेट देम गो. ट्राई एंड सी ईच वन लीविंग दैट space of my mind. Let them go so that I can be free and powerful. Om Shanti.
0: Om Shanti. Thank you so much. But जैसे कि हमने ये realize किया कि खुशी का जो thought है, खुशी की जो feeling है, वो भी मैं create कर रही हूँ, मैं खुद ही create कर रही हूँ. तो इसका मतलब तो दर्द भी मैं खुद ही create कर रही हूँ. तो let go करना ही पड़ेगा, मुझे खुद ही उसे डिलीट करना है. अगेन ये करना मुझे है, लेकिन ये मुझे बहुत बड़ी शक्ति भी देता है. तो उस शक्ति को हम क्यों जाने दें, हमारे अपने हाथ में है. एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, हमारे साथ शेयर करें. आज इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे शांति दीदी के नजर से विनोबा, इस विषय पर उनका साक्षात्कार।
1: प्रेम पंथ अहिंसा का।
2: मेरा नाम है शांति कृपलानी, मैं मूल नासिक की, तो नासिक में उनके मित्र रहते थे। मैंने उनको लिखा कि अभी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, आप तो संत बन गए, मेरी भी इच्छा है मैं संत बनूं, मैं ब्रह्मचर्य से रहूं, तो आपके पास कैसे आऊं? तो उन्होंने तुरंत मुझे पत्र लिखा, तुम चिंता मत करो, अपने पिताजी के साथ आ जाओ। अब कहाँ नासिक और कहाँ कलकत्ता, लेकिन फिर भी गई उनके पास और उन्होंने बहुत प्यार दिया और फिर कहा तुम्हारे जैसी लड़कियाँ तो मुझे चाहिए, अभी तुम अपना घर छोड़ दो या मेरे पास आ जाओ। लेकिन मेरी उम्र उस समय छोटी थी, 16 साल के, और ग्रेजुएट हुई थी तो आगे का पढ़ना था, तो मैंने कहा मेरी इच्छा तो है पढ़ने की, लेकिन कॉलेज में जाऊंगी तो बुरा हाल होगा, इसलिए कॉलेज में नहीं, मैं भी नहीं गया, तू भी नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या करना? तो फिर क्या कहे, वहाँ नासिक में ही उन्होंने मुझे, इनका पोतनी दोस्त रहता था, उनको कहा इनको मराठी सिखाओ, गीता ही सिखाओ मेरी, तो उन्होंने मुझे गीता ही सिखाई मराठी में, जाती थी उनके घर पर और हमारी दोस्ती बढ़ती गई। और फिर 57 में मैं उनके पास आई और उन्होंने कहा तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारे लिए जैसा भी होगा वह सब कुछ करूँगा। तो मेरे पिताजी ने कहा भाई अभी छोटी बच्ची है, उसको क्या पता चलता है ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसलिए उसको मत लो। उन्होंने कहा देखो मैं छोटा बच्चा था 20-10 साल का, तो मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और आज मैं संत बना, अभी ये 15 साल के मैं कहती हूँ मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेती हूँ तो ये मीरा बनेगी, चलो अब बताओ क्या कहना। मेरे पिताजी चुप हो गए और कहा आप जैसा कहेंगे, वैसे आप तो संत हैं। तो उसके साथ फिर 57 में यहाँ आई, फिर ये ब्रह्म विद्या मंदिर 59 में हुआ और यूँ करते उनसे हमारे जुड़ते गए और आज कितने साल हो गए, 55 से भी ज़्यादा साल हो गए, तो उनके साथ ऐसा जुड़ते गए थे और उन्होंने हमारे लिए फिर बहुत किया, फिर संस्कृत सिखाना, ब्रह्मसूत्र सिखाना, उपनिषद सिखाना, वो सारा काम आध्यात्म सिखाने का काम वो ही करते थे। तो उनके लिए हमारे मन में एक ये था यहाँ ब्रह्म विद्या मंदिर चलाना है, तो देखो बहनों का आश्रम है, तो 30 बहन तब यहाँ रहती थी, तो 30 बहनों को तुमको संभालना है, कैसे संभालना है कि जैसे तुम रहती हो वैसे उनको भी सिखाना है, उनको पढ़ाना है लिखना, ब्रह्मचर्य का व्रत उन्हें समझाना है, ये बात वो मुझे कहते थे। और यूँ देखते देखते 30 बहनों का मैंने देखा है, ग्रुप बना, समूह बना और मिलजुल करके रहते हैं, ट्रस्ट बनाया और संपत्ति रखी और सब मिल करके आज समूह के इतना सुंदर बन गया है, 10 ऊपर गई तो 10 नीचे आ गई।

जाना होता रहता, कुछ मर जाते कुछ नहीं पैदा होती है, लेकिन आश्रम बहुत अच्छा चला। बहन मिल करके जो उनकी इच्छा थी वो ऐसा लगता है कि पूरी होने वाली है, होकर रही, इतनी मेहनत की। वो कहते थे प्राइम मिनिस्टर बनना आसान है लेकिन संत बनना कठिन है। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी थी और इंदिरा जी आती है, लेकिन मुझे इंदिरा जी जैसे प्राइम मिनिस्टर को नहीं बनाना है, मुझे तुम्हें संत बनाना है। शंकराचार्य कैसे थे, देहातीत अवस्था थी उनकी, जैसे मैं हूँ, सारे विश्व को छोड़ करके ये क्या कहते हैं कि जग तो झूठा है, संसार सब दिखावा है, असली तो आत्मा है। तो उसको जो पहचान थी, उसकी जो ब्रह्म विद्या थी, ये विश्व माते घर ऐसे मते चरा चीज तरह किम बहुना चरा चरा अपन अपन झाला, ही जी स्थिति आए ही तुम ती झाली पाहिजे, तुम्हारी होनी चाहिए और ऐसी मेरी इच्छा है, इसलिए मैं कुछ कोशिश करता हूँ। मरूँगा तो भी ऊपर नहीं रहूँगा, उतर आऊँगा और तुम बहनों को मैं वो शिक्षा दिशा रहूँगा। और आए तो आप पूछेंगे अब आए क्या, देह रूप में तो नहीं आए, लेकिन हृदय रूप से हमें महसूस होता है कि हाँ है और वो सारा काम कर रहे हैं। भूदान में वो जब यात्रा करते थे ना, जैसे केरल में गए तो मैं केरल में गई, वो पंजाब में गए तो वहाँ जाती थी, एक महीना दो महीना रहती थी और फिर चल जाती, रहती यहाँ थी, लेकिन हर साल जाती थी। केरल में गए, पंजाब में गए, महाराष्ट्र में गए, फिर और कहाँ गए, जगह जगह जहाँ जहाँ वो जाते थे ना पहुँच जाती थी। तो पंजाब में गई तो मैंने कहा अब कैसा होगा, कैसा क्या होगा, मैं बैठा हूँ ना, और फिर सारी व्यवस्था वो यात्रा की करते। तो उनके साथ हम भी पैदल चलते थे, 20-20 मील चलते थे, बच्चे थे ना, 20-20 से बच्चे, अच्छा लगता था। तो इस माने में भूदान से जुड़े, फिर सर्वोदय से जुड़े, फिर उनके साहित्य से जुड़े, और फिर जुड़े उनके सारे जो कुछ भी उन्होंने अपने लिखे रखा है, वेदोपनिषद वो सारे पढ़े पढ़ाए। अब मुझे किसी ने कहा उपदेश दो, उपदेश किस पर, उपनिषद पर, हम बोलूँगे क्योंकि सिखाया है, हम पक्के हो गए हैं ना पढ़ करके। तो वो उनकी ताकत हमें मिली जो हमें सारा भारत घुमा लिया। उनके जाने के बाद भी मैं सारा भारत कहीं भी किसी ने बुलाया, मद्रास बुलाया, दिल्ली बुलाया, सब लोग बुलाते रहते हैं, कार्यक्रम करते हैं और हम पहुंच जाते हैं और सबको अच्छी तरह समाधान देते हैं, खुशी होती है लोगों को। कहीं तो अखबारों में नाम आता है, कहीं तो कहते हैं दोबारा बुलाते हैं, बाकी सब वो ही करते हैं, खर्च भी वो करते हैं, लेना देना भी वो करते हैं, हमको कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन बहुत आदर के साथ लोग बुलाते हैं। तो इसलिए सब दृष्टि से हम जुड़े, इधर किसी से जुड़े हम भूदान से, फिर गोवर्धन मंदिर से, फिर साहित्य से, फिर ब्रह्मविद्या मंदिर से, फिर आखिरी जो बात है संत बनने की, वो बाकी बची है, वो करने का करते रहते हैं। और भगवान की जब इच्छा होगी क्षण में पता नहीं चलेगा कब मन से कहाँ कर कहाँ पहुँचे। तो जो है विश्व चमाज घर ऐसे मती जयाती स्थल के बोना चरा चरा अपन, ये जो उनकी वृत्ति थे वो हमारी इच्छा है कि हम बन जाए। तो कभी कभी मैं इनको भजन सुनाती थी।

संग नाचूंगी, ओ राम रस पीके मैं तो पिया संग नाचूंगी, नाचूंगी मैं पिया संग नाच। अरे गली गली ओ गली गली मोले गोविंद गुण गाऊंगी, मीरा बन के नाचूंगी अभी गल।

चाहूंगी। अच्छा वही होता है, लेकिन योग चाहिए मिलने का भी। अब 80 उम्र हो रही है, ऐसी चल रहा है, तो अभी 55 साल तो यहाँ हो गए। सारा भारत देख लिया, सारी दुनिया देख ली, जहाँ जाना था जा लिया। एक विदेश बता जाने का, मैंने कहा मैं पाकिस्तान जाऊंगी, मैं कराची की हूँ। तो बाबा कहते हैं कराची नहीं जाना है, तुमको दिल्ली जाना है। और वही हुआ, दिल्ली पाकिस्तान जाना नहीं हुआ, इच्छा थी जाने की, लेकिन राजीव गांधी की हत्या हो गई, पैसे मैं नहीं जाई। और दिल्ली में तो कई बार ऐसे वहाँ कार्यक्रम होता रहता है जगह जगह, अभी भी लोग बुलाते हैं, लेकिन अब ताकत नहीं। अब कहते हैं इसलिए जहाँ जहाँ जाने का मौका मिला। युवा पीढ़ी के लिए कलयुग नहीं कहना, विज्ञान युग कहना। हमेशा वो हमको यही समझाते, ये विज्ञान का युग है, इसमें हमको सारा अध्यात्म के साथ उसको जोड़ना। विज्ञान को जब अध्यात्म से जोड़ेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, अगर केवल वो जाएगा तो वो खून खराबी बढ़ेगी। तो ये खून खराबी ना बढ़े, ये जो आत्मीय भाव है ये पैदा हो, ये जो आत्मा का वजह है, वो दोनों को जोड़ने का काम तुम लोगों को करना है। क्या है? विज्ञान और अध्यात्म। हमेशा वो यही कहते थे, कलयुग की बात मत करो, कलयुग तो कभी था ही नहीं, होगा भी नहीं, लेकिन ये जो है विज्ञान और अध्यात्म जब जुड़ जाएगा, विज्ञान जितना जितना आगे बढ़ेगा, वो किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। विज्ञान किसके लिए है? लोक कल्याण, गरीबों की सेवा के लिए, न कि उनको मारने के लिए। लेकिन आतंकवाद क्या करता है? उल्टा करता है। तो ये जो आतंकवाद को, उसको मिटाने का काम कौन कर सकता है? वो अध्यात्म। कैसे अध्यात्म करेगा? विनोबा जी का जब डाकू समस्या खड़ी हो गई, तो वो वहाँ थे किसमें, बंड बिहार में, तो उन्होंने कहा कि अब इन डाकुओं का कौन हल करेगा, कौन समझाए? तो नेहरू जी ने कहा कि ये बड़ा प्रश्न है कि हम जितना मारते हैं उतने और बढ़ते हैं, तो मैं क्या करूं? तो कहा नेहरू जी आप मुझे इजाज़त दीजिए, इस डाकुओं के बीच मैं जाऊंगा और मैं उन्हें समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अध्यात्म है। तो नेहरू खुश हो गए, वो PM थे, क्यों ना खुश होंगे। तो वही गए, तो इनको एक महीने का काम दिया। लेकिन क्या बताऊं, वो कहते हैं बाबा कि मैं शांति वहाँ जाता था आगे, तो डाकू खुद होकर आकर मेरे पेरे पहुँचे थे। हाँ आप भले हमें अरेस्ट करें, आप मुझे हटाए, ये कर दे, जेल डाले, लेकिन हमें डर नहीं है, हम आपके पास शरण में आ गए हैं, आप हमें बचाइए। तो इतने कितने डाकों का परिवर्तन हो गया। तो वो डाकों का परिवर्तन कौन करेगा? अध्यात्म। वो विज्ञान भी नहीं करेगा, लेकिन ये बाबा की इच्छा है। और ऐसे उन्होंने अपना काम किया, जैसे सर्वोदय का किया, भूदान का किया, वैसे उन्होंने ये डाक का किया। आपको मालूम है कि नहीं? मालूम नहीं, नहीं ये तो बड़ी अजीब थी। मेरी इच्छा थी मैं भी जाऊँ आगरा के पास में उनसे, लेकिन वो 10 लोगों को रखा उन्होंने, ज़्यादा लोगों को नहीं, और 10 लोगों के साथ वो महीना भर करके आए। तो उन्हें खुश हो गए कि ये काम तो ऐसा ही होना चाहिए। तो वो डाकू परिवर्तन का काम, सुनने जैसी बात है। अभी धीरे दिन क्या ऐसा है ना, एक रूटीन जीवन बना है। प्रार्थना करते थे पहले, अभी प्रार्थना कभी होती है नहीं होती, उम्र के हिसाब से कभी नींद कम ज़्यादा होती है, लेकिन मन में एक भाव बैठ गया है कि ये जो सारा हमको दिख रहा है वो टेम्पररी है, आज हम हैं कल नहीं हैं। तो इसलिए जीवन का जो रोज़ खाना पाना होता है, लोग आते हैं मिलते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती तो बाहर भी जाते हैं, सत्संग करते हैं। तो ऐसा जीवन रूटीन हो गया है कि कोई हमको इस प्रकार का बंधन नहीं कि सवेरे उठो के शाम तक, ऐसा ऐसा नहीं। पर है फिर भी कि प्रार्थना भी, मैं प्रार्थना जाती नहीं हूँ, फिर आप कहते जाते नहीं तो कैसा होता? अंदर प्रार्थना ही चलती है कि कभी क्या भगवान के साथ, मुझे क्या, मैंने कहा नाचूंगी किसके साथ नाचूंगी, बात करूंगी किसके साथ करूँगी, उठूंगी किसके साथ उठूंगी। तो जब भी कुछ अड़चन भी आती है ना, मुसीबत, तो मैं कहते भगवान अभी तक तुमने चलाया, 60 साल मेरा आशीर्व पूरा किया, अभी आगे तुम देख लो, मेरी तो ताकत नहीं है। तो ऐसा करके फिर निश्चिंत हो जाते। तो ये जो जीवन है, आप कहेंगे कि सवेरे उठ करके दाल रोटी खाते हो? हाँ भाई, दाल रोटी तो खानी पड़ेगी ना, खाते हैं, लेकिन वो ऐसा रूटीन हो गया है, 3 बार खाना खाना, 2 बार प्रार्थना करना, और फिर अपना लोगों से मिलना जुलना, और ईश्वर में मन विलीन करना। बस ईश्वर में विलीन अगर एक बार हो जाए ना, फिर कोई कार्यक्रम उसका नहीं रहता है, वो तो जीता है, बस जीना है जीता है, जब मृत्यु आएगा ले जाएगा। उनके दैनंदिन इसी प्रकार होती थी। सवेरे उठते थे 4 बजे, 4:30 बजे प्रार्थना करके फिर सो जाते थे, फिर 6 बजे उठते थे, फिर 6 बजे लोगों के साथ मिलते जुलते थे, मजाक करते थे या
आसन बासन, और उसके बाद फिर भोजन करते थे हमारी तरह 11 बजे, और फिर सो जाते थे, फिर 2 बजे तक नहीं उठते थे। फिर 2 बजे के बाद लोग ऐसे आते थे मिलने के लिए, उनसे मिलते थे, फिर 4 बजे उनको स्नान पानी वगैरह करना है, वो 4 बजे स्नान करते थे, और पानी भी गर्म नहीं करना, चिल्ली पर नहीं करना, धूप का स्नान। तो उस पानी से 4 बजे स्नान करके 5 बजे फिर दूध देते थे, और फिर 6 बजे प्रार्थना करके सो जाते। राम राम, अब मैं जाता हूँ, होंगे तो कल मिलेंगे, नहीं तो राम राम, ऐसा कहते होंगे तो कल मिलेंगे दादा। 6 बजे वो प्रार्थना करके सो जाते थे, और फिर सवेरे 4 बजे। तो हम कहे आधी रात को क्या करते हैं, आपको इतनी नींद कैसे आएगी? तो कहते हैं मैं ध्यान करता हूँ, 3 बजे उठता हूँ, ध्यान करता हूँ, और ध्यान करते करते फिर ईश्वर का नाम सो जाता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जब बीमारी हुई ना उनको, हार्ट अटैक आया, तब हमको लगा अब क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन डॉक्टर आ गए पवनार, इसके आ गए सेवाग्राम के, बम्बई के, दिल्ली के, सब डॉक्टर आए, सब ने कहा इनको ऑपरेशन कराना है। मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, तो क्या करना है? फिर इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने कहा भाई आप थोड़ा सा मद पानी लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अभी तय कर लिया है मैं उपवास करके मरूँगा, ऑपरेशन नहीं चाहिए मुझे, ऑपरेशन नहीं चाहिए, कोई दवाई नहीं चाहिए, आप मैं पानी दूध भी छोड़ देता हूँ, कल से मैं पानी दूध भी नहीं पीऊँगा, और बिना इसके भगवान का नाम लेकर जाऊँगा। अब हार्ट अटैक था, डॉक्टर डर गए कि ज़्यादा टिकेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा मुझे अभी रहना है नहीं, मेरा समय पूरा हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा समय हो गया, अब मुझे जाने दो। और फिर उन्होंने पानी भी छोड़ दिया। जब पानी छोड़ा तो इंदिरा जी ने बहुत समझाया, शायद पानी वगैरह पियो, बहुत लोग आए, बहुत किया, लेकिन किसी के माने नहीं, और 9वें दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। और ऐसे ही लेटे थे, हमने कहा थोड़ा सा पानी पिए, तकलीफ हो गई, तकलीफ होती थी, बेचैनी होती थी, अरे अंदर पता नहीं क्या क्या होता था, लेकिन पानी नहीं डाल। वो 9वें दिन फिर सुबह 9 बजे 9:30 बजे प्राण त्याग दिए। फिर हमने कहा भगवान अच्छा हुआ बचा लिया, वो गए तो अच्छा हुआ, कितनी तकलीफ हुई होगी। फिर इंदिरा जी ने फ़ोन किया, वो रूस में थी, तो भाई इसको जलाओ मत, मैं अभी आ रही हूँ, मेरा अग्निशम उनके सामने करो। तो उनके कारण हम एक दिन रुक गए, और दूसरे दिन 15 तारीख को उनका मृत्यु हुआ, 16 तारीख को वो इंदिरा जी आई, उनके सामने अग्नि संस्कार किया, उन्होंने भी चंदन का रखा, और क्या लाखों लोग सौरा भरा हुआ था, आश्रम नदी के किनारे गए, आश्रम में अंदर करेंगे तो भीड़ होगी तो आश्रम टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं, मेरा नदी पर अग्नि संस्कार, ये खुद कह कर गए। तो उनका अग्नि संस्कार किया, और 80 विसर्जन यहाँ समाधि में थोड़ा सा डाल दिया, और फिर देखते देखते बाबा अनंत में विलीन हो गए, और फिर कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन दिखाई नहीं दिए शरीर से, नहीं दिखाई दिए मन से, तो याद उनकी आती रहती है। ऐसा उनका मृत्यु था, दिनचर्या भी अजीब थी, मृत्यु भी अजीब थी। मुझे कहेंगे तू उपवास करेंगे क्या, मैं कहती हूँ नहीं बाबा, मुझे भय लगता है, उपवास से बहुत परेशानी होती है, और पानी भी नहीं पीना, लेकिन इस जिद इनकी इतनी कंट्रोल था, निश्चय पावर था कि पानी भी नहीं पीऊँगा, नहीं पिया पानी, आखिर तक नहीं पिया, इतना सा सुझला नहीं डाला और वो डाल दिया, नहीं पिया पानी। अब उनकी ताकत थी, और वो सहन करके ऊपर चले गए, ऐसे सबको मिले, भाग्य की बात है, संत तो बड़े बहुत अच्छे मिले, अब वैसे संत हम बने, ये भगवान से प्रार्थना है। अब वो हमें पार लगाए, माया नदी पार करना कठिन है, कहते हैं जिंदा रहते हुए बोलना आसान है, लेकिन जब तक वो घटना नहीं घटती है ना, तब तक करना कठिन है। तो इसलिए हम कहते थे जयंती मनाते थे, जयंती मत मनाओ, मेरी जयंती मनाओ मरने के बाद, क्योंकि मैं पक्का हो जाऊंगा कि तुम लोग कहोगे वो सच्चे संत थे, अभी तुम कहोगे वो झूठा संत था, आप कहोगे तो सच्चा संत है। तो ऐसा वो हमको समझाते थे, तो ऐसा लगता है कि सचमुच वो सच्चे संत थे, और जयंती मनाते हैं, बाकी जयंती का तो कोई मतलब नहीं है, फिर भी संत हैं, तो ऐसी उनकी जीवन लीला थी, अजब जीवन लीला थी, आँखों से देखी ये बड़ी बात है, ये हमारा भाग्य है, और आगे भाग्य वही है कि ईश्वर में लीन हो जाए, बाकी का भाग्य भी पूरा हो जाएगा, फिर हम भी संत बन जाए तो खत्म हो गई बात, उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो स्त्री शक्ति में या उनके मन की जो भावना है कि ये आना चाहिए, और वो देखते देखते आएगा, ऐसा लगता है, मैं आशा करती हूँ कि उन्होंने जो संकल्प किया है वो समय पर काम करेगा, और ऐसी स्त्रियाँ निकलेगी। अब तो जगह जगह कितना प्रचार, स्त्रियाँ कितनी आगे आ गई है, तो और आगे आएगी।
और इसी में से भजन तो बहुत गाते थे ना, मराठी थे ज्यादातर, भजन बहुत गाते थे, तो अभी कहना मुश्किल है। अनंत रूपे अनंत देशे दे

0: ये उनका बहुत प्यारा भजन था और वो कहते थे सारे विश्व में मुझे वो अरे वो वाघ में भी शेर में भी कुत्ते में भी बिल्ली में भी अनंत रूपे अनंत विषय मुझे वही एक दिखता है शांति। अब मैं इन सब दुनिया से परे हो गया समझा दे मैं परे यही बस तुम लोग भी हो जाओ एक बार कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए ऐसी थी।
1: अभी आपने सुना आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में शांति दीदी का साक्षात्कार।
2: यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।

तुमसे मिलकर तुमको है बताना। और आपको बताऊँ, ये गाना बांग्ला में भी दादा ने गाया है। उसका कुछ ऐसा मतलब शब्द है, आई थिंक इसको समझ आएगा।

0: राजन।
1: थँक यू, सुपर्ब सुपर्ब सर। खरंच असं वाटत होतं की सानुदास गात आहेत समोर।
0: थँक्यू थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच,
1: खूप छान। ट्यून इन एनीवेअर, रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आजपर्यंतचा तुमचा सगळ्यात आवडता परफॉर्मन्स कुठला?
0: अभी एक बताना तो मुश्किल होगा। गाने तो 22,000
1: जो यादगार रहा हो।
0: मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस मैं बताता हूँ। मैंने गाना गाया था, सबसे पहला जब मैंने गाने की शुरुआत की तो वो भी एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग था।
1: अच्छा।
0: जब कोई बात बिगड़ जाए।
1: अरे वाह, वो भी कुमार,
0: वो भी उनका एकदम माइलस्टोन गाना था। और एक गाना है, दिल है मेरा दीवाना।
1: क्या बात है, जब कोई बात की झलक सुनना चाहेंगे हम लोग फिर।

0: थैंक यू।
1: क्या बात है, तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग। म्हणजे आठवणीत राहिलेला एखादा किस्सा सांगा ना की जो खूप आठवणीत राहिलेला आहे तुमचा, मजेशीर असो गमतीशीर किस्सा असा कुठला घडला तुमच्या आयुष्यात स्टेज शो करत असताना वगैरे।
0: एक्चुअली एक शो किया था मैंने इधर नासिक में, तो उसका थोड़ा सा मेमोरी है। बहुत मतलब लोग क्रेजी होके देख रहे थे, तो लगता है कि सानू ही है। और बहुत अप्रिशिएट किया था। उतना अप्रिशिएशन मेरे को जो सबसे ज्यादा मिला था वो नासिक में मिला था एक शो में।
1: अच्छा।
0: बहुत क्राउड ने मेरे को वंस मोर बोल के मैंने एटलीस्ट 15 सॉन्ग बैक टू बैक गाए थे। वो मेरा एक अच्छा मेमोरी है अपने करियर का।
1: महाराष्ट्र लेवल पे आप गाना गाते हो और कॉर्पोरेट इवेंट्स में भी आप सिंगिंग शोज करते हो,
0: थिएटर शो, कॉर्पोरेट शो,
1: उसके लिए आपको अवार्ड्स वगैरह भी मिले होंगे।
0: हाँ, मिले,
1: उनके बारे में बताइए कुछ।
0: बहुत सारे अवार्ड मिले, जैसे सप्तरंग चैनल के लिए मैंने गाया है। बहुत सारे इवेंट्स उनके होते हुए, पंकज जी का सर।
1: अच्छा।
0: बहुत अच्छे अच्छे इवेंट करते हैं। रिसेंटली अभी आगे एक इवेंट है 7 तारीख को, इवन उसमें भी मैं गा रहा हूँ।
1: क्या बात।
0: और बहुत अच्छा थीम है गीत सरगम। और वैसे बहुत सारे अवार्ड है, खानदेश भूषण है।
1: अच्छा।
0: निफ है, नासिक इंटरनेशनल फेस्टिवल, दादा साहेब फाल्के का फेस्टिवल होता है, उसमें मेरे को अवार्ड मिला है। और बॉम्बे में 2-3 अवार्ड मिले।
1: क्या बात है,
0: अभी
1: बहुत बढ़िया।
0: रिकॉल नहीं हो रहा है, बहुत सारे अवार्ड है।
1: और आपका जो एल्बम सॉन्ग आया था मैंने सुना है, हाँ तू है,
0: हाँ,
1: उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
0: बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने बॉम्बे में काम करने से पता चलता है कि एक्सपीरियंस धीरे धीरे पहले तो नहीं था, फिर बॉम्बे जाके काम किए, क्योंकि ये टाउन अपना थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो बॉम्बे जाके वो एल्बम किया था। और मेरे साथ गाया है जो वर्ल्ड टूर शानुदा के साथ उनकी को सिंगर है रचना चोपड़ा जी, उन्होंने गाया था। और बिल्कुल 90s का वाइब है गाने में, और गाना बहुत ही मेलेडियस गाना था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, नया था खुद का गाना गाने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा था और लोगों ने उसको बहुत प्रोत्साहन दिया था।
1: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। अभी जो कल्चर है यूथ जो है आजकल की, ये वेस्टर्न सॉन्ग्स या वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ ज्यादा उनका लगाव दिखता है।
0: yes, yes.
1: तो उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: एक्चुअल क्या है, जड़े जो होती है, रूट्स जो होती है, वो तो क्लासिकल ही है। आप कितना भी आप क्लासिकल गाने के बाद आप लाइट म्यूजिक गाइए, आप वेस्टर्न गाइए, आप लैटिन गाइए, आप व्हाट एवर इट इज, आप कुछ भी गा सकते हैं, बट रूट्स हमारी जो है वो
1: क्लासिकल
0: होना ही चाहिए। बट आज के जो सॉन्ग है मैं उसको बुरा नहीं बोलता, बट उसमें मुझे बताइए आप सोल किधर है, सोल कहाँ है? अभी के गाने कैसे होते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं। 90s में जब हम गाने, इसीलिए 90s का इरा सुपर हिट है, ताकि वो जो सॉन्ग है, वो जो डेकेड था,
1: वो अलग ही नशा है,
0: वो एक नशा है, जो 90s में जिसका जन्म हुआ है वो चीज को वो इमेजिन कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत शो में टीनेज भी आते हैं, जो टीनेजर होते हैं वो भी हमको ऐसे ही गाने डिमांड करते कि सर आप ये गाना गाइए। मैं एक गाना गा रहा था तो सर एक बच्चे ने फरमाइश किया कि दिल कहता है चल उनसे मिल, ये गाना तो लड़का बहुत यंग था, लेकिन आज भी हम ऐसे थोपते हैं, ये वेस्टर्न चल रहा है आजकल हैमरिंग है, लेकिन देखा जाए तो जो टाइमलेस मेलेडी होता है वो 90s का ही है। और आई थिंक डोंट के मेलेडी रिटर्न वापस आएगा, इसीलिए हम लोग मेलेडी गाने ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। 90s का जो मेलेडी वो अभी नहीं है,
1: अभी नहीं है सच में,
0: ऐसा है।
1: चलो 90s का आपका फेवरेट सॉन्ग हो जाए फिर।
0: ठीक है।

0: कितना अच्छा मेलेडी है। सुनने वालों को मैं बता दूं कि मजरू सुल्तानपुरी का लास्ट एल्बम था अन्नू मलिक जी के साथ,
1: हाँ
0: अकेले हम अकेले तुम,
1: अकेले हम, यस
0: जिन्होंने
1: यस
0: सिक्सटीज में
1: जी,
0: काम किया उन्होंने 90s में ये एल्बम की है,
1: बहुत बढ़िया,
0: और पूरे गाने सुपरहिट, पूरा एल्बम
1: पूरा
0: सुपरहिट।
1: सुपरहिट है आमिर
0: वही
1: खान,
0: ना, वही नाइन्टीज का वाइब था,
1: यस
0: वो
1: अलग ही है।
0: जादू था, टाइमलेस मेलेडी था।
2: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: सिंगर के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ तो गायकाचे गुणदोष काय असले पाहिजे, म्हणजे गायक कसा असावा तुमच्या मते?
0: एक्चुअल मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक के सिंगर्स ने सबसे पहले ईगो नहीं होना चाहिए, माने सक्सेस माइंड में नहीं जाना चाहिए, उससे जमीन पे रहने चाहिए, और अच्छा गायक होने से पहले अच्छा इंसान होना
1: जी
0: ज़रूरी है, और तभी आपके अंदर वो प्योरिटी आएगा, आपके गाने में वो प्योरिटी आएगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: तो काय काय काळजी घेतली पाहिजे गाण्यासाठी गळ्यासाठी?
0: ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग ऐसे माने बोलते कि ये खाने से कुछ होगा, खाने से कुछ नहीं होता, और इतना है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन में रहना चाहिए, और माने फ्राई फूड नहीं खाना चाहिए जिससे गले को इफेक्ट हो,
1: बराबर।
0: थोड़ा सा मॉर्निंग वार्म अप करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, दिन भर गला आपका ट्यून रहेगा,
1: जी जी जरूर।
0: और थोड़ा सा प्रिकॉशन तो रखना ही पड़ता है।
2: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: तो आप सिंगिंग करते हो, स्टेज शोज करते हो, तो आपको कौन सा, मतलब अभी कैरियो के सिंगिंग का भी ये चल रहा है, बहुत ट्रेंड
0: यस
1: चल रहा
0: यस
1: है,
0: यस
1: और ऑर्केस्ट्रा पे लाइव सिंगिंग करना,
0: यस यस
1: तो आपके हिसाब से कौन सा बेटर होता है?
0: डिपेंड ऐसे है कि आज जो प्लेटफॉर्म माध्यम बहुत आ गए, पहले उतने माध्यम नहीं थे,
1: बरोबर,
0: बट देखिए फिर वही बात आएंगी कि कराओके में जान नहीं है, माने वो इमोशन नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, जब लाइव म्यूजिशियन जब प्ले करते हो उसके साथ जब सिंगर गाता है, दोनों का जो कोलेबरेशन
1: यस यस,
0: जो होता है
1: कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है।
0: उसमें म्यूजिक शावर होता है, एक मैजिक होता है,
1: सही
0: तो
1: है सही है।
0: उसका जो फील है वो एकदम मुझे लगता है
1: लेकिन
0: कि
1: आजकल
0: अच्छा
1: का
0: है।
1: ट्रेंड है हर कोई करोक पे गाने की कोशिश करता है, भले ही वो उसका स्केल मैच हो या ना हो, लेकिन उसमें वो केयर करना चाहिए कि स्केल परफेक्ट और बीट के साथ।
0: यस यस अभी
1: हाँ
0: लोग
1: हाँ
0: हॉबी से गाते हैं, उनको वो बिगिनर्स होते हैं, उनको ये
1: यस
0: पता नहीं है कि ये गाना किस नोट पे है, इसमें बीट कितना है, 4-4 काउंट है, 4-8 काउंट है, टू टू फोर काउंट है, तो ये सब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेने के बाद ही ये चीज़ें आती है,
1: बराबर।
0: बट मुझे लगता है जो भी काम आप कर रहे हो पहले उसको प्रॉपर सीखो और फिर करो तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा जाएगा, मुझे ऐसे लगता है।
1: तुमच्या आवडीचं गाणं कुठलं आहे सगळ्यात जास्त?
0: मैं एक गाना बताने से क्या हो, मैं बहुत सारा जो भी गाया था फेवरेट ही है,
1: सही है,
0: बट जो भी गाया वो फेवरेट ही गाया मैंने अभी
1: क्या बात है।
0: तक।
1: अच्छा, नवोदित गायकांना तुम्ही काय सांगाल?
0: यही बोलूँगा कि बस जमीन पे रहिए, अच्छा काम करते रहिए, गाते रहिए और सीखिए, बेसिक नॉलेज लीजिए, मोर मोर सुर मोर देन परफेक्ट। रैप भी आज का जो ट्रेंड है वेस्टर्न वो तो आप करिए, लेकिन क्लासिकल का फाउंडेशन बना के रखिए।
1: बरं, आणि पुन्हा एकदा विचारते की तुमचं यापुढे भविष्यात तुमचे काय स्वप्न आहेत किंवा तुमचा मानस काय आहे की या क्षेत्रात मी असं असं करणार, त्याबद्दल सांगा ना।
0: जब तक जिंदा हो गाते ही रहूंगा। और बहुत अच्छे अच्छे
1: आणखी काही तुमचे प्रोजेक्ट असतील भविष्यातले त्याबद्दल?
0: बिल्कुल है, अभी नेक्स्ट ऑगस्ट में 2-3 एक प्रोजेक्ट है नदीम शर्वन रिवाइंड 90s बोल के, बहुत अच्छा एक कंसेप्टेड इवेंट है जो जलगांव में हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे बॉम्बे में होते लाइव ऑर्केस्ट्रा, उसी वही वही कल्चर वही माने पैटर्न हम जलगांव में लेके आ रहे हैं। मेरे साथ पंकज कासार सर है सप्तरंग चैनल के, वो कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं जलगांव के लिए कुछ तो भी नया करने के लिए,
1: अच्छी बात है।
0: कराओके से हटके लाइव सिंगिंग।
1: सो बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट,
0: थैंक यू वेरी मच।
2: और ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: और जाते जाते हमें क्या सुनाएंगे अभी आप?

18वीं सदी का सुधार युग। उस युग के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस आदि। उन्होंने अपने अपने प्रयासों से समाज कल्याण का बीड़ा उठाया था। इन महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ने समाज और देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पश्चिमी देशों को भारत की एक नई पहचान मिली। भारतीय ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता से उनका परिचय हुआ और सारा विश्व इस तरुण सन्यासी के प्रति आकर्षित हो गया।

0: आपने 19वीं सदी के भारत और मुख्यतः बंगाल के बारे में भी जाना। हमने सुना वो कितना अशांत युग था, समाज दिशाहीन तथा अंधकारमय था। कुछ समाज सुधारकों ने समाज को कुछ हद तक सुधारा, दिशा दी, परंतु सदियों की रूढ़िवादिता, धर्मांधता तथा कदाचार पर संपूर्ण रूप से विजय पाना संभव न था।
1: उसी अशांत कालखंड में स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। अपने ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति एवं वेदांतिक राष्ट्रवाद से उन्होंने समूचे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दिल जीत लिया। दिशाहीन भारत को एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिला। जाति, प्रांत और भाषाई अंतर को भुलाकर भारतवासियों ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से लोग मुग्ध हुए।
0: ऐसे दिव्य महापुरुषों की जीवन कथा बहुत ही रोचक है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने हजार वर्षों का काम कर दिखलाया था। इतने सारे गुणों से धनी स्वामी विवेकानंद को संस्कार अपने परिवार से मिले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, अतः विवेकानंद को जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता नगरी के उत्तरी भाग में सिमुलिया या शिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उस भवन का जीर्ण द्वार अतीत वैभव का साक्षी बना खड़ा है। दत्त वंश का ऐश्वर्य और ख्याति, उनके 12 महीने के 13 उत्सव पर्व का आडंबर उस समय के कलकत्ता के धनी समाज में चर्चा का विषय रहा।
1: कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील राममोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्तों ने नगर में काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। राममोहन दत्त के पुत्र दुर्गाचरण ने उस समय की प्रथानुसार संस्कृत तथा फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजभाषा अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु पिता जैसी धनोपार्जन की प्रवृत्ति उनमें न थी। तत्कालीन धनी संतानों के समान नवीन नागरिक सभ्यता के भोग विलास भी उन्हें आकर्षित न कर सके।
0: ये धर्मानुरागी युवक अवसर और मौका पाते ही धर्म शास्त्रों की चर्चा तथा सत्संग किया करता था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए हिंदी भाषी वेदांती साधुओं से प्रभावित होकर दुर्गाचरण ने 25 वर्ष की उम्र में ही सारा ऐश्वर्य और सम्मान त्याग कर सन्यास ले लिया।
1: सन्यासियों के नियमानुसार 12 वर्ष के बाद दुर्गाचरण एक बार अपने जन्मस्थान का दर्शन करने आए थे और अपने एकमात्र पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके आगमन के एक वर्ष पहले ही उनकी पत्नी यानी विश्वनाथ की माता का निधन हो गया था। सन्यासी पुत्र विश्वनाथ ही सन्यासी विवेकानंद के पिता थे।
0: विश्वनाथ ने अपने दादा राममोहन का अनुसरण कर वकालत करना प्रारंभ किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वकालत में व्यस्त रहते हुए भी अध्ययन में उनका प्रबल अनुराग था। वे फारसी जानते थे, हाफिज की कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि पढ़ने के कारण धार्मिक कट्टरता उनमें ना थी। कई ऊंचे खानदान के मुस्लिम उनके मुवक्किल थे तथा लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों की यात्रा करने के कारण वे उस समय के अनेक खानदानी मुस्लिम परिवारों के संपर्क में आ चुके थे। अतः वे उनके रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनकी पाबंदी भी करते थे। बाइबल के अध्ययन के कारण वे ईसाई धर्म के भी प्रेमी थे, अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे काफी धनोपार्जन करते थे और खर्च भी वैसा ही करते थे। रिश्तेदारों दोस्तों का आदर सत्कार करना तथा ठाट बाट से रहना वे पसंद करते थे। उनके घर में अनेक आश्रित पलते थे और उस विशाल भवन में किसी चीज की कमी ना थी।
1: परंतु विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक पारंपरिक महिला थी। इस बुद्धिमती कुशल गृहिणी की देखरेख में उनके विराट परिवार के सभी कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न होते थे। वे बंगला पढ़ना लिखना भली भांति जानती थी। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत आदि का नियमित पाठ करती और साथ ही अपने पति पुत्र के साथ चर्चा करके तत्कालीन विचारधारा से भी परिचित रहती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें श्रद्धा करते थे। वो मीठा बोलने वाली गंभीर धर्म परायणा महिला प्रतिदिन शिव पूजा करती थी।
0: भुवनेश्वरी देवी के मन में एक दुख था। दो कन्याओं की माता तो वे थीं, पर उनका कोई पुत्र ना था। पुत्र मुख देखने की लालसा ने उन्हें धीरे धीरे बहुत ही व्याकुल कर डाला। वे प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर में प्रार्थना करती और शिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर व्रतों का पालन करती।

कैलाशपति भुजंगेश्वराय नमः। हे देवाधिदेव, मैं भक्ति पूर्वक तन मन से तुम्हारी सेवा में रत हूँ। सभी कठोर व्रतों का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। तुमसे आज्ञा या आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई भी काम नहीं करती प्रभु। फिर तुम्हारी कृपा कब होगी? कब आप प्रसन्न होंगे? कब मेरी गोद में एक पुत्र आएगा प्रभु? कब तुम्हारी दया होगी? बोलो बोलो ना, कब होगी दया? कब कब होगी तुम्हारी दया?

0: इतने व्रत उपवास पूजा अर्चना के बाद भी उनके मन को शांति न हुई। शिव को और भी अधिक तुष्ट करने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाली एक रिश्तेदार महिला को पत्र लिखा।
1: आपको तो मालूम है कि मैं शिव की पूजा नियमित रूप से करती हूँ, उनके नाम का व्रत उपवास भी करती हूँ, पर उनकी कृपा मुझ पर आज तक नहीं हुई। मेरी पुत्र कामना अधूरी ही रह गई। आप तो भाग्यवती हैं, शिव की नगरी में ही निवास करती हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हर दिन मेरी ओर से बाबा विश्वेश्वर के मंदिर में पुत्र कामना करते हुए पूजा एवं होम यज्ञ आदि की व्यवस्था कर दें। मुझे आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगी।
2: ये जानकर कि उनकी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ हो रहा है, माता भुवनेश्वरी प्रफुल्लित और आश्वस्त हुई। वे शिव अर्चना में और भी ज्यादा डूब गईं। ग्रह देवता शिव मंदिर में ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होने लगा।
0: एक दिन प्रातः काल शिव अर्चना के बाद वे ध्यान मग्न हो गईं। परिवार के लोगों ने और दास दासियों ने उन्हें कई बार आवाज दी, पर वे सब कुछ भूलकर बेसुत बैठी रहीं। सारा दिन बीत गया, सांझ हो आई। पति विश्वनाथ के अदालत से लौटने पर उन्हें ये समाचार मिला। वे पत्नी से बेहद प्यार करते थे। व्याकुल होकर पूजा कक्ष में आए और भुवनेश्वरी को आवाज दी।
3: भुवन, ओ भुवन, भुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुना है सुबह से यहां ऐसी ही बैठी हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भुवन, तुम सुन रही हो ना? मेरी ओर देखो, जवाब दो भुवन, भुवन।
0: भुवनेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहीं पर थककर सो गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने या जगाने की। सूर्योदय के समय अचानक घर वालों की नींद खुली। उन्हें पूजा घर से घंटा बजने और मंत्रोच्चार की आवाज आई। सब दौड़ते हुए वहां जाकर एकत्रित हुए। भुवनेश्वरी होश में आ गई थी और जोर जोर से मंत्र पढ़कर शिव को प्रणाम कर रही थी।
1: हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय, तुमने मुझे ये क्या दिखाया, क्या दिखाया? क्या ये निरा सपना था या सच का पूर्वाभास? कहो देव, कहो ना। अरे अरे, सुना तुमने? तुम लोगों ने सुना? मेरे इतने दिनों की तपस्या पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, शिव ने मुझ पर दया की है। हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे प्रभु।
3: भुवन, भुवन, शांत हो जाओ, सब ठीक तो है ना? क्या देखा तुमने, कहो, इतनी खुश क्यों हो, कहो तो।
1: मैं क्या कहूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने ये कैसा सपना देखा? हाँ,
3: क्या देखा तुमने, कहो भुवन।
1: मैंने देखा तुषार धवल पर्वत श्रृंग से कैलाशपति शिव उतर कर आ रहे हैं। हाँ, और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा भुवनेश्वरी। और कहते कहते शिव एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर मेरी गोद में आ गए। हाँ हाँ, वो मेरी गोद में आ गए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, सच। ओ, हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे शिव,
2: हे शिव, हे शंकर, कहती हुई वे बारंबार माथा टेकती रहीं। परिवार वाले हतप्रभ रह गए।
0: उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी, पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात। शीत से ठिठुरते हुए नर नारी स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे। इसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33:33 पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया।

0: आनंद उल्लास और हर्ष से दत्त भवन मुखरित हो उठा। मंगल शंख बजने लगे। बंगाल के हर घर में पौष पर्व का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, मानो नवजात शिशु को सादर अभ्यर्थना करने प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा।
1: नामकरण का दिन। बालक की आकृति बहुत कुछ उसके सन्यासी पितामह की तरह देखकर परिवार के कुछ लोगों ने शिशु का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता ने अपने स्वप्न को स्मरण कर कहा,
2: जी इसका नाम शिव के नाम पर वीरेश्वर रखा जाए। ठीक है, वे ही तो शिशु का रूप धरकर मेरे घर आए हैं। ये मेरा शिव, मेरा शंभू, मेरा महेश और मेरा शंकर है, मेरा बच्चा।
0: सभी ने उनका कहना मान लिया। वे उसे वीरेश्वर से वीरे और अंततः बिले कहने लगे। अंत में अन्नप्राशन के समय बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ, और भविष्य में यह बालक नरेंद्रनाथ या नरेन नाम से ही परिचित हुआ।
1: बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट थे। उनके उधम से घरवाले हमेशा परेशान रहते थे। वे माँ को बहुत तंग करते थे। एक दिन बालक नरेन आंगन में दौड़ दौड़ कर माँ को सता रहा था।
2: बिले, अरे ओ बिले, आना इधर आ, बात सुन मेरी। बिले, ओहो आना, कपड़े बदल ले। ओहो
3: नहीं नहीं बदलूंगा कपड़े, लो पकड़ो मुझे।
2: अरे सुन ना।
3: नहीं पकड़ पाई ना, मैं अभी पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास।
2: ठहर, पकड़ती हूँ तुझे। बस ये पकड़ लिया। बोल अब कहाँ जाएगा। ठहर ठहर, मैं मजा चखाती हूँ। नहीं सुनेगा ना मेरी बात। हाँ नहीं सुनेगा। चल चल आ इधर आ, ये इधर आ, इधर आ, ये ले ये ले, ये शिव, ओ शिव, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू, ले। अब तेरा माथा कुछ ठंडा हुआ ना। चल चल अब अंदर चल। चल बेटा सर पोंछ दू, फिर कपड़े बदल लेना। शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर।
1: पिता विश्वनाथ बरामदे में खड़े होकर माँ बेटे का ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा,
4: भुवन तुम क्यों हमेशा बिले के पीछे पड़ी रहती हो? अरे खेलने दो ना उसे। देखो ना, नाहक उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया। अगर उसे जुखाम हो गया तो जाओ जल्दी से पहुंचो उसका सर।
2: हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है, बेटे की शरारत तुम्हें दिखती ही नहीं। अरे देखो तो, दौड़ा दौड़ा कर मेरा तो दम निकाल दिया, और उसे भिगोने में देखो ना, ये देखो मैं पूरी तरह भीग गई। अरे बिले चल ना, चल जल्दी चल चल।
4: पर तुमने दोबारा उसे नहलाया क्यों, और वो भी ठंडे पानी से?
2: क्या आप नहीं जानते कि आशुतोष शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, और मेरा बिले भी तो शिव का ही अंश है। इसलिए जब मैं इसे किसी भी तरह से शांत नहीं कर पाती तो ठंडा पानी डालकर शिव शिव की जाप करती हूँ, और ये भी शांत हो जाता है।
4: तुम माँ बेटे की महिमा अपरंपार है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बच्चा है अभी, शरारत तो करेगा ही।
2: ए देखो जी, वकालत करते हो उसी को संभालो, हम माँ बेटे के बीच ना आना, ठीक है? ए, ए, ए, अरे अरे अब फिर भाग गया। अरे देखो तो, ओहो फिर भाग गया बिले।
4: लो संभालो अब।
2: ओ माँ गो माँ, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गई हूँ। ओ अरे अरे, ओ राधा शामू, अरे देख तो किधर भाग गया। वो भाग रहा है, वो जा पकड़। पकड़ लिया ना, ले आ इधर, इधर ले आ। मांगो माँ, महादेव शिव ने स्वयं ना आकर जाने कहां से एक भूत को भेज दिया है, सबको परेशान कर रखा है। ओह, अरे तू तो फिर से रोने लगा, देखा देखा जी अपने लाडले की करामत। हाँ हे, देख देख बिले, अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा ना तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। हाँ
3: सच कह रही हो ना माँ, शिव जी मुझे कैलाश नहीं आने देंगे तो मैं नंदी बैल की सवारी कैसे करूंगा।
2: अच्छा बच्चा बनो बेटा, तो शिव जी तुझे खुद वहां ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, समझा। अच्छा अच्छा, अब चल, तो चल भीगे कपड़े बदल ले। हाँ चल चल बेटा, चल चल, आजा आजा आजा आजा, चल चल।
4: तुम दोनों माँ बेटे की बातें तुम दोनों ही जानो, और जाने तुम्हारे शिव जी। भाई मैं तो चला। नरेंद्रनाथ सबके प्रिय थे, मोहल्ले के धनी निर्धन सभी परिवारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। हर घर में आना जाना उनके परिवार जनों को पसंद ना था। एक दिन,
5: ए ए ए बिले, क्यों रे बिले, तू कहाँ गया था, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही थी।
3: अरे मैं तो देवू के घर गया था, आपको मालूम नहीं पड़ा क्या, आज देवू के दादाजी गुजर गए। देवू बहुत रो रहा था, उसी के साथ बैठा था।
5: हे भगवान, इस लड़के को जात पात का कोई ध्यान नहीं है, तूने देवू के दादाजी के शव को छुआ तो नहीं। हे ईश्वर,
3: छुआ नहीं, सब दादाजी को आखिरी बार प्रणाम कर रहे थे, सो मैंने भी किया।
5: तूने प्रणाम किया, चल आज तेरी अच्छी पिटाई होगी, चल माँ के पास।
3: आप मुझे डांट क्यों रहे हैं, देवू मेरा दोस्त है, उसके दादाजी को मैं भी दादाजी कहता था, और दादाजी को प्रणाम करने में क्या बुराई है, माँ ही तो कहती है बड़ों का आदर करना चाहिए।
5: अरे अरे अरे अरे अरे, इस मलेच्छु को कौन समझाए, चल चल तू तो अंदर चल, फिर देखना क्या होता है तेरा। ए ए ए, ए किसी चीज को छूना मत, पहले नहा ले, चल पहले नहा।
3: ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, आपको छू दिया, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, आप तो वैसे ही हैं।
5: हाय हाय हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया, मैं तो नहा धोकर घर से बाहर जा रहा था, छू दिया ना, अब फिर से नहाना पड़ेगा, राम राम राम।
3: तो जाइए फिर से नहाइए।
5: राम राम राम राम राम।
0: और नरेंद्र हंसते हुए अंदर चले गए। चाचा जी के गुस्से का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं।

0: नरेंद्र बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब और शरारती थे, पर उनकी बाल सुलभ शरारतों से अधिकतर लोगों का मनोरंजन होता था। उनकी मजेदार बोलचाल और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को सुनकर गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनके दोस्त तो नरेंद्र से कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे और नरेंद्र भी मौका मिलते ही कहीं भी मंडली जमाकर बैठ जाते और दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाते। रामायण महाभारत की कथा कहानियां तो सुनाते ही थे, साथ ही अलिफ लैला की कहानियां, ईसप की नीति कथाएं तथा देश विदेश की परिकथाएं भी सुनाया करते थे।
1: नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच न था। अगर कोई कहानी याद न आती तो मनगढ़ंत पात्रों की काल्पनिक कहानियां दोस्तों को सुनाया करते। उनकी काल्पनिक कहानियां भी इतनी मजेदार हुआ करती थीं कि दोस्त यह समझकर भी कि नरेंद्र झूठी कहानियां सुना रहे हैं घंटों मंत्रमुग्ध हो सुनते रहते थे। बचपन से ही उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी।
0: जीवन के आरंभ में ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ झुंड बनाकर क्रीड़ा कौतुक करते समय नरेंद्र ही इन सब आयोजनों के नेता होते। नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था।
1: उन दिनों पाठशाला में मकर संक्रांति के दिन गंगा की वंदना के गीत गाकर गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करने की प्रथा थी। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ बाबू मकर संक्रांति के दिन गुरुजी एवं छात्रों को नई धोती कुर्ता दिया करते थे एवं गुरुजी छात्रों को गाजे बाजे के साथ गंगा पूजा कर आने की अनुमति देते थे।
0: लौट कर आने पर प्रथा अनुसार घर पर बनी मिठाइयां खाने को मिलती थीं। नरेंद्र ने पिता से छात्रों के साथ गंगा पूजन की अनुमति मांगी। बाजा गाजा और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे से सहज ही हो गई। अतः गंगा की महिमा गाते हुए बच्चे जुलूस बनाकर गंगा तट पहुंचे। वहां केले के पेड़ के छिलकों से नाव बनाकर उनमें दिया जलाकर रख दिया गया और फूल मालाओं से सजाकर नावों को गंगा जल में बहा दिया गया।
1: छोटे छोटे नाव धीर गति से गंगा में बहने लगी। संध्या के झुरमुट अंधेरे में जगमगाती हुई नाव दियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरों के साथ झूमती हुई सागर की ओर बढ़ चली। बच्चे ढोल मंजीरों के साथ गाते रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापियादास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: श्रोते हो, आताच आपण युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद ऐकलात। हा कार्यक्रम स्वराज संस्थान संचालनालय यांच्या सहकार्याने विद्यावाणी सामुदायिक रेडिओवरून प्रसारित करण्यात आला। ऐकत रहा विद्यावाणी 107.4 FM।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बहुत छोटी सी सुई के छेद में एक मोटा सा रस्सा पिरोने की कोशिश की है? सुई का नाका इतना बारीक होता है कि उसमें केवल एक पतला सीधा और रेशमी धागा ही आर पार निकल सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति उस बारीक छेद में एक बड़ा भारी और अकड़ा हुआ रस्सा ढूंढने की कोशिश करें तो वह सुबह से शाम तक पसीना बहाता रहेगा, लेकिन वह रस्सा उस छेद से कभी पार नहीं होगा। उस पार जाने की एकमात्र शर्त यह है कि धागे को बिल्कुल महीन, हल्का और सीधा होना पड़ेगा। अध्यात्म की दुनिया में भी भक्ति का जो प्रवेश द्वार है, वह भी ठीक उस सुई के नाके से भी कई गुना ज़्यादा बारीक है। लेकिन हम उस द्वार पर अपने अहंकार, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान का भारी भरकम बोझ लाद कर पहुँचना चाहते हैं। कबीर साहब आज हमें इसी नासमझी का आईना दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला सूत्र। भक्ति द्वारा सांकड़ा राई दसवे भाई, भक्ति द्वारा सांकड़ा राई दसवे भाई, मन तो मंगल भई रहा क्यों करी सके समाई। भक्ति द्वारा सांकड़ा राई दसवे भाई,

0: जाए।
1: श्रोताओं, कबीर साहब भक्ति के आंतरिक नियम को प्रकट करते हुए कहते हैं, भगति द्वारा सांकड़ा। यह जो प्रभु प्रेम और आत्म साक्षात्कार का भक्ति द्वारा यानी भक्ति का द्वार है, यह अत्यंत सांकड़ा यानी बहुत ही संकरा और बारीक है। कितना संकरा? राई दसवें भाई। जैसे सरसों के एक छोटे से राई के दाने को भी 10 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो उसका जो दसवां हिस्सा होता है, यह मार्ग उससे भी ज़्यादा बारीक और सूक्ष्म है। वहाँ अहंकार के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। लेकिन उस संकरे द्वार पर हमारा मन किस रूप में खड़ा है, अगली पंक्ति में कबीर इसका कड़वा सच बताते हैं। मन तो मंगल वही रहा। यह जो तुम्हारा मन है, यह वासनाओं और अपनी उपलब्धियों पर मैं के घमंड से फूलकर मंगल यानी एक विशालकाय मदमस्त हाथी बन चुका है। क्यों करी सके समाए? अब तुम ही बताओ कि राई के दाने से भी बारीक छेद में एक मतवाला हाथी क्यों करी समाए, यानी कैसे समा सकता है, कैसे प्रवेश कर सकता है, जब तक यह हाथी जैसा भारी मन पिघल कर सूक्ष्म धागा नहीं बनेगा, तब तक भक्ति के उस पार पहुंचना असंभव है। यह दोहा अहंशून्यता और शरणागति का महासूत्र है। उपनिषदों में भी उस परम तत्व के मार्ग को शुरस्य धारा निशिता दुरत्तया, यानी कि उस्तरे की तिखी धार के समान बारीक कहा गया है। संसार में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को अपना प्रभाव, पद और अहंकार बड़ा करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा के मार्ग पर चलने का नियम बिल्कुल उल्टा है। यहाँ जो जितना छोटा, शून्य और विनम्र होता है, वही सबसे आगे निकलता है। मंगल प्रतीक है हमारी उस झूठी अहंता का, जो कहते हैं कि मैं कुछ हूँ। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक साधक अपनी इस भारी भरकम अहंता को विसर्जित करके बिल्कुल निर्मल, निराभिमान और शून्य नहीं हो जाता, तब तक उस परम आनंद के धाम में कदम भी नहीं रख सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद के भीतर झांक कर देखिए कि हम विधाता के दरबार में क्या लेकर जा रहे हैं। क्या हम अपनी पूजा में, अपने दान में या अपनी प्रार्थना में अपने अहंकार, अपनी शान और अपने बड़प्पन का हाथी साथ लेकर नहीं जाते? हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े साधक या दानी हैं। यही भारीपन हमें परमात्मा से दूर कर देता है। आज कोशिश कीजिए अपने इस मंगल यानी भारी मन को विनम्रता की चक्की में पीसकर हल्का करने की। अपनी मैं को विसर्जित कर दीजिए। उस राम नाम के सामने बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह निष्कपट और सरल बन जाइए। जब आपका मन अहंकार के बोझ से मुक्त होकर राई के दाने से भी सूक्ष्म हो जाएगा, तो भक्ति के उस संकरे द्वार से आपका प्रवेश इतनी सहजता से होगा कि आप एक ही पल में उस परम शांति और परमानंद में समा जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब अपने हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशी के उस लेवल को देखना शुरू किया तो फिर अवेयर होना शुरू हो गए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मेरी खुशी को मुझसे छीन लेते हैं या मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। अब तो हम भाषा को भी देख कर बात करते हैं तो बहुत कुछ निकलता है सामने और उन सभी को एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि पूरी श्रृंखला में लेते जाएं। तो आज भी हम बात करेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुजर चुकी होती हैं, हमारा पास्ट हम छोड़ ही नहीं पाते, चाहे हम कितनी बार भी कह दें कि मैं सब भूल गई हूँ, सब भूला है, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आती है जो उससे सिमिलर हो या कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो ट्रिगर हो जाता है और फिर उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें जो मेरी खुशी को या मैं खुश नहीं रह पाता, तो क्यों होता है ऐसे और उसे सॉल्व कैसे करना है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जैसे कि पिछली बार बात की थी एक्सपेक्टेशंस, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए थे। ऐसे ही अगर हम पास्ट को देखते हैं, क्यों है ऐसा, हम कितना, अभी मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर रही हूँ, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक चलता जा रहा है, आई डोंट इवन रियलाइज कि आई रिमेम्बर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, बट देन व्हेन इट कम्स it just takes over.
1: What happens then after that?
0: Then the whole day is gone.
1: Whole day is gone.
0: No, I'm saying like it happens with a lot of
1: things. Then the past becomes my present. See, hum usko kehte past hain, hum baar baar kehte wo jo beet gaya, ab jo beet gaya, lekin jitni baar usko yaad karte hain to wo past na rehkar wo ab mera वर्तमान बन जाता, क्योंकि जैसे आपने कहा जैसे ही वो पास्ट याद आया तो मेरा आज का दिन भी, सपोज वो पास्ट में कुछ ऐसी बात हुई थी जब हम दर्द में चले गए थे, आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन अब मैं जितनी बार वो मुझे वो पास्ट याद आता, एवरी टाइम आई गो इनटू पेन, सो एक्चुअली इट्स नो मोर अबाउट द पास्ट बट नाउ इट्स इज माय प्रेजेंट। तो ये पास्ट भी एक कॉन्सेप्ट है, एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन पास्ट तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं ना, पास्ट मतलब जो बीत गया, लेकिन अब जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट रियली नथिंग टू डू विद द पास्ट, इट्स एक्चुअली बिकम माय प्रेजेंट। ये पूरी श्रृंखला में हमने यही देखा कि हम खुशी कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वस्तुओं में ढूंढा, परिस्थितियों में ढूंढा, लोगों से ढूंढा कि आपसे मिल जाए, और जो बहुत बड़ी चीज है जहाँ हम ढूंढते वो जो बीत गया या वो जो होने वाला है। सो आई लुक फॉर हैप्पीनेस ईदर इन द पास्ट और आई एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन द फ्यूचर। आज साइकोलॉजिस्ट भी बताते कि मोस्ट ऑफ अस, ऑफकोर्स ये हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अस हम 80-20 के रेशियो से चलते हैं कि 80% समय हम बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं एंड 20% ऑफ द टाइम हम आने वाली बातों के बारे में सोचते हैं। तो वेरी रेयर, ये सुनने में ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बट इसकी भी अवेयरनेस चाहिए। हमने कभी हम अवेयर नहीं है क्योंकि हम अपनी थॉट्स के अवेयर नहीं, हमें यही नहीं पता सारा दिन कौन से थॉट क्रिएट कर रहे। तो सेकंड स्टेप ये अवेयर होना कि किस बारे में थॉट क्रिएट कर रहे, वो तो होता ही नहीं, लेकिन एक दिन भी अगर आप अपने थॉट्स को धीरे धीरे चेक करें सो यू विल सी ईदर वी आर हेयर, बीता हुआ पल वो हो सकता है अभी जो लास्ट मिनट पास हुआ, या ऑफ कोर्स 10-20 साल पुराने वाली बात, या फिर हम सोच रहे हैं
0: आगे
1: आने वाले पल, आने वाले नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हियर आई एम इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक मोमेंट, एक एक सिचुएशन, एक एक इवेंट जो पास होता जा रहा है, इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं या तो पास्ट इवेंट के बारे में सोच रही हूँ या फिर आने वाले मोमेंट के बारे में। जितनी देर मैंने आने वाले मोमेंट के बारे में सोचा, मेरा ये प्रेजेंट वाला बीत गया, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, उतनी देर में मैं यहाँ से हिलकर यहाँ पहुँच गई, और यहाँ आने के बाद नाउ आई थिंक ऑफ दैट पास्ट मोमेंट। इट्स लाइक दिस बॉक्स, देयर आर 3 बॉक्सेस, ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी मैं प्रेजेंट वाले बॉक्स में खड़ी हूँ, लेकिन मैं या तो पास्ट वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ या फिर फ्यूचर वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ। इधर खड़े खड़े मैंने इसके बारे में सोचा, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ तो मैं इस बॉक्स में आ गई ना। सपोज दिस इज 10 AM, दिस इज 10:01, एट 10:01 आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 10 AM
0: कि वहां तब क्या हुआ था।
1: यू सी, सो एक्चुअली क्या हो रहा है, 10:01, 10:02, 10:03 एक्चुअली हो क्या रहा है, हर पल हम सोच तो रहे हैं, लेकिन उस पल के बारे में सोच रहे हैं जो एक्चुअली क्रॉस हो गया या जो एक्चुअली आने वाला है. एंड इन द प्रोसेस हम वो वाले मोमेंट को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ दैट मोमेंट. सो बेसिकली एट एवरी मोमेंट वी आर थिंकिंग अबाउट दैट व्हिच इज नॉट इन माय कंट्रोल. जो हम बहुत बार ये फीलिंग जनरेट,
0: तो वो जो वो प्लान भी बनाते हैं हम कि दिन भर, वो भी एक संभावना ही रखनी चाहिए फिर.
1: और क्या है ही संभावना. डू यू थिंक इट ऑलवेज गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान. लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता कि अगर हम हर पल को उस पल के लिए बिताएं, उस पल में जिए. अगर आप इस पल में हैं, एक्चुअली देयर इज स्टेबिलिटी. लेकिन जैसे ही आप इस पल को छोड़कर दो उन चीजों पर गए जो आपके कंट्रोल में नहीं है. देखो मन जब भी कोई
0: लेकिन
1: ऐसी
0: अगर इसी पल कुछ बहुत ऐसा हो रहा है, यू नो, मेरे सामने कुछ ऐसा सा आग लग गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो मेरी स्टेबिलिटी
1: डिस्टर्ब नहीं होगी. अगर ये लगा भी है और अगर आपका पूरा फोकस इस पर है कि मुझे इसको हैंडल करना है, डिस्टर्ब नहीं होगा. लेकिन अगर मन में ये होगा अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा, वी हैव ऑलरेडी गॉन इन टू द नेक्स्ट मोमेंट.
0: यस,
1: we already anticipate the more losses. इस moment में ताकत है हमारे अंदर situation को face करने की. लेकिन वो ताकत कहाँ खत्म होती, जब हम अगले पल के बारे में fear create करना शुरू कर देते हैं. तो ये एक, जब हम meditation करते हैं, why does it benefit? Meditation हमें help करता है अपने mind की, you know, speed को, thoughts की speed को slow down करने के लिए, अवेयर होने के लिए. और मेडिटेशन हमें ये सिखाता कि उन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना जिनके ऊपर कंट्रोल
0: किया
1: है. इफ एनीवन ट्राइज टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट इन देयर कंट्रोल, तो रिजल्ट क्या होगा, आपको कैसा फील होगा. तो पास्ट के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में सोचना, दोनों केस में हम ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मन की स्थिति कैसे होगी. इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट डिस्टर्ब. लेकिन दिस रिक्वायर्स डीप अवेयरनेस कि हम कैसे उस पल में रहें. एंड उस पल में हम हैं या नहीं हैं, उसका साइन है स्टेबिलिटी. जैसे ही मन ऐसे ऐसे होने लगा, अब क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि क्या थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो लेट्स गो बैकवर्ड्स. जैसे ही मन डिस्टर्ब हो, चेक हो जाए किस बारे में सोच रहे थे, कौन सी पास्ट की बात या फिर कौन सी फ्यूचर की बात. और फिर मन को प्यार से अगर दोनों जगह से हटाकर जस्ट कम टू द प्रेजेंट मोमेंट. पहले हम पास्ट को देखते कि अगर पास्ट को बारे में सोचने से, क्योंकि बहुत बार हमें ये कहा जाता या हमारा भी बिलीफ सिस्टम ये बना कि पास्ट को याद तो रखना चाहिए ना, पास्ट को याद
0: से हम
1: सीखते हैं,
0: हिस्ट्री रिपीट्स
1: इटसेल्फ. तो पास्ट को हमें याद रखना है. अगर पास्ट को याद रखेंगे तो उससे शिक्षा मिलती है. पास्ट को याद रखेंगे तो फिर धोखा नहीं खाएंगे. पास्ट में धोखा खाया था, भूलना मत उसको, याद रखना ताकि अगली बार धोखा नहीं खाएंगे. दीज आर आवर बिलीफ सिस्टम्स रिलेटेड टू द पास्ट. अब इन बिलीफ सिस्टम्स को अगर हम थोड़ा सा चेक करें, पहली बात, जब हम पास्ट को याद कर रहे हैं, याद मतलब रिवाइज कर रहे हैं फिर से, तो हम एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. लेट्स टेक द पास्ट व्हिच इज नॉट वेरी प्लेजेंट, देन वील टेक द पास्ट व्हिच इज प्लेजेंट आल्सो. अनप्लेजेंट पास्ट, एक छोटी सी बात हो सकती है, किसी ने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की, या एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, किसी ने मुझे रिश्तों में धोखा दिया. पास्ट कुड बी समवन लेफ्ट from the family. So it could be small से लेके बहुत बड़ी बात तक. अब जब हम वो past को revise करते हैं मन से या even अपनी conversation में, क्योंकि हमारी conversations में भी बहुत बार बात जो होती वो पीछे हुई हुई बातों के बारे में होती.
0: Actually, वो हमेशा ही हमारा present बनता जा रहा है. जितना ज्यादा हम
1: absolutely. Yes. But अब क्या हो रहा है, जैसे ही I am talking to you, let's say for example मैं आपसे बात कर रही हूँ about something which has happened with me. फिर आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा, उनको लगता, आपको लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन देखो उन. आई एम रिवाइजिंग दैट होल सीन ऑफ द पास्ट टू यू. एंड बोलते बोलते खंदर भी सोच रही हूँ और आपको भी सुना रही हूँ. और बोलते बोलते जो मेरे अंदर वो एंगर, वो हर्ट, वो जो डिजेक्शन, ये सारे जो इमोशंस क्रिएट होते, दिस इज अ साइन कि मैं अभी भी उनके वो बिहेवियर को, उनके वो वर्ड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूं, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, दिस इज माई बिलीफ सिस्टम, दिस कम्स आउट इन माई कॉन्वर्सेशन. उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल टू थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल. वन पर्सन, मैं कितना भी बोलूँ कि उनको ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल. सेकेंड, वो सीन तो बहुत पहले पास हो चुका है, अब उसके बारे में सोचना या बोलना कि वो नहीं करना चाहिए था, हाउ फ्यूटाइल इज दैट और हाउ यूजफुल इज.
0: लेकिन सो मेनी टाइम्स वी से कि निकलने तो दो कम से कम, यू नो, इतना जो भरा हुआ है, चाहे वो गुस्सा है या एंगर है, मतलब ठीक है, अब आगे तो मुझे अपने ऊपर चेक करना है. आगे के लिए तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ना लोगों को चेंज कर सकती हूँ ना सिचुएशंस को, लेकिन पीछे के लिए जो
1: लेकिन व्हाट वी डोंट रियलाइज इज, जैसे हमने कहा, स्टेबिलिटी ऑलरेडी है. आप अभी एक्सपीरियंस करो, आप बिल्कुल स्टेबल हो, मन बिल्कुल शांत है. अब लो एक पास्ट के इंसिडेंट को, कोई भी, और उसको डिस्कस करना शुरू करो, तो क्या होगा?
0: वेरी ट्रू. यू नो, लाइक अगर वो बड़ा डिटैच्ड वाला हो तब भी you know, कहीं
1: बहुत वो ऐसे ऐसे. अब हमें ये याद नहीं रहता है और हम अपनी ही खुशी को, अपनी ही स्टेबिलिटी को हम खुद खत्म करते हैं. देन एट द एंड ऑफ द डे वी से व्हाई आर वी सो डिप्लीटेड. अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को ये चेक करें कि पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में डिस्कस करना, वर्णन करना, आई एम ओनली डिप्लीटिंग माई एनर्जी, एटलीस्ट आई विल स्टार्ट बींग केयरफुल. आई जस्ट नीड टू बी केयरफुल. अभी क्या हो रहा है, क्योंकि शायद हमें अवेयरनेस नहीं है कि इससे मेरा कितना नुकसान होता है, हम उसको बहुत कैजुअली करते जाते. एक पास्ट इंसिडेंट हो गया, किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया, अब मैं दिन में 4 लोगों को फोन करती हूँ, वो डिस्कस करती हूँ, वो शेयर करती हूँ, वट एम आई डूइंग, द सीन इज लॉन्ग पास्ट ओवर. लेकिन जितनी बार आई डिस्कस, आई एम ट्राइंग टू से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. What am I trying to say? उनको मेरे अनुसार करना चाहिए था. Futile. अब कई बार हम कहते हैं, लेकिन इससे मुझे सीखने को मिलता है. If I keep reminding myself, तो मुझे सीखने को मिलता. तो हमें क्या सीखने को मिलता है इससे? That also we need. सीखने को जरूर मिलता, but provided हमने उसको right perspective में लिया है. अगर मेरे साथ कोई situation हुई जिससे उस मोमेंट, चाहे वो कल था या 10 साल पहले था, आई एक्सपीरियंस्ड पेन, आई एक्सपीरियंस्ड हर्ट, बहुत कुछ हुआ, आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ लो. अब उससे मुझे क्या सीखने को मिला? अगर आज भी मैं कहती कि मैंने उस बात को याद रखा है, उन लोगों को याद रखा है, उन लोगों ने जो एक एक चीज कही वो मैंने याद रखी है, इससे मुझे सीखने को मिला. क्या सीखने को मिला? कि अगली बार जब वो लोग मिलेंगे तो मुझे उनसे ध्यान से रहना. तो ये कोई मेरी शिक्षा नहीं हुई, ये मैंने किसके बारे में एक्चुअली सीखने की कोशिश की? आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट देम, दैट्स नॉट लर्निंग. एंड आई एम ओनली क्रिएटिंग, जो पास्ट में हर्ट हुआ, आई एम एक्चुअली यूजिंग इट टू स्पॉइल माय प्रेजेंट एंड माय फ्यूचर.
0: कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि वो कभी भी आके मुझे मैनिपुलेट कर पाते हैं, यू नो, सो मे बी इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ जब मैं होती हूँ, सी अगेन देयर मे बी देयर पर्सनैलिटी और वट एवर, और माई पर्सनैलिटी बिकम्स वीकर, वट एवर.
1: सो नो, इट्स नॉट वट एवर, इट्स टोटली टू डिफरेंट थिंग्स. अगर हम ये प्रोसेस ले रहे हैं, वो मुझे मैन्युपुलेट कर पाते हैं, इससे मैंने कुछ नहीं सीखा, इससे मैं उन्हीं के बारे में चिंतन कर रही हूँ, विच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम.
0: मुझे क्यों कर पाते हैं ये देखना,
1: दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट. मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है? मौसम बदल रहा है तो मौसम के बारे में चिंतन करना नहीं, मुझे अपनी प्रोटेक्शन क्या करनी. दैट्स व्हाई वी से राजयोगा मींस ब्रिंग द फोकस टू योरसेल्फ. वो ऐसे हैं, वो एंड आई थिंक आई एम लर्निंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. अगर मैं औरों के बारे में, औरों के व्यवहार के बारे में सोचती रहूं तो मैं बच जाऊंगी उससे? Not at all. I think, you know, if I you know what I think? If I understand them well, then I will be safe. Uh-huh. No way. Unless I understand myself and I teach myself and I learn for myself कि मुझे कैसे respond करना है, क्योंकि वो तो मेरे control में नहीं है. एक ही है जो मेरे control में है. तो वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, It's not important. मुझे कैसे respond करना है, मुझे अपने सुरक्षा कैसे करनी है, और सुरक्षा भी क्या कि मैं हर्ट नहीं हूँ. वो ठीक से अगली बार बात करें, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगली बार मैं हर्ट नहीं हूँ, ये मेरे कंट्रोल में. अब आज मेरे लिए क्या लर्निंग होनी चाहिए? एक लर्निंग हो सकती है कि ये तो ठीक से बात ही नहीं करती है, इनसे तो दूर ही, इनसे मैंने ना बहुत संभल के चलना है, दिस इज आवर वोकैबुलरी. तो हम उनके बारे में सोच रहे हैं अगेन कि इनसे ज्यादा बात नहीं करनी है, ये कहीं भी ऐसा कुछ कह देते हैं बिकॉज ऑफ विच आई गेट हर्ट. नाउ स्पिरिचुअलिटी मीन्स द पर्सपेक्टिव शुड बी कि कल मैं हर्ट हुई थी, आज मुझे ये ध्यान रखना है सिर्फ कि मुझे हर्ट, सी ब्रिंग द फोकस टू myself. आने वाली हैं बहुत सारी बातें, आने वाली हैं, आप अगर कंट्रोल उनको करने की कोशिश करोगे यू विल जस्ट कोलैप्स. अच्छा कल आपने ठीक से नहीं बात की, आज आपने ठीक से बात कर ली, लेकिन आज कोई और ठीक से नहीं बात कर, कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे, कितने लोगों को समझाएंगे कि ये राइट तरीका है बात करने का. आई एक्सपेक्ट यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, आई हाउ मेनी पीपल कैन आई कंट्रोल द वर्ल्ड. सिचुएशन आई थी, मुझ पर डैमेज हुआ, मैं आगे बढ़ी, लेकिन मैंने उस डैमेज को, उस हर्ट को हील नहीं किया, सो आई हैवंट लर्नड एनीथिंग. वो मुझे बिटर दर्द में ही छोड़ गई. अब हम कहते कि ये मुझे याद रखना है, लाइक यू सेड हिस्ट्री रिपीट्स. अब हिस्ट्री रिपीट्स क्या होता, जितनी बार हम उस बात को याद करते, वो हुई पहले, लेकिन अब मैं जितनी बार, आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, हम बीती हुई बातों के बारे में सोच के अभी भी रो सकते हैं. यू नो दैट वी कैन जस्ट हैव लाइक दैट, व्हाट हैपेंड, बात तो है ही नहीं, वो लोग भी नहीं है, वो सीन भी नहीं है, हाउ कम आई एम एबल टू क्राई राइट नाउ हियर, बिकॉज वो बात यहाँ क्रिएट होती, बाहर नहीं होती. तो पास्ट को हम जितनी बार क्रिएट करते हैं, हम पास्ट को अपना प्रेजेंट बना लेते हैं, और ये प्रेजेंट फिर मेरे फ्यूचर पर अफेक्ट करता. तो जो हम कहते कि पास्ट को अगर याद रखेंगे तो फिर वो फिर से नहीं होगा, यू नो व्हाट वी नॉर्मली से, याद रखोगे तो फिर से वो बात नहीं होगी. एक्चुअली जितना याद रखोगे
0: उतना बार बार
1: वो बार बार होता जाएगा. यू सी आई एवरी टाइम आई मीट यू आई एम सेइंग ये मुझे इंसल्ट करती है, ये मुझे तो एवरी टाइम व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप. And every time I get hurt very, very easily. अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि past repeat ना हो, तो actually उसको याद नहीं रखना होगा, लेकिन past repeat ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: We'll have to repeat,
1: you will have
0: delete.
1: To forget it totally. Forgetting the past is the only guarantee कि past repeat ना होगा. क्योंकि जितनी बार वो यहाँ repeat, यहाँ हो नहीं हो we don't know, लेकिन जितनी बार भी वो यहाँ repeat होता, वो already repeat हो चुका. जैसे आपने शुरू में ही कहा, past की कोई बात याद आई और मेरा आज पूरा दिन खराब हुआ, तो repeat हो गया ना, the past has repeated itself. अगर suppose मैं hurt हुई थी तभी या dejected feel किया, अब मैं जितनी बार उसको repeat करती हूँ, I again experience hurt, अगेन एक्सपीरियंस इंसल्ट, तो मेरा यहाँ का संस्कार, मेरा यहाँ का थॉट पैटर्न, वो और भी ज़्यादा कड़क, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया. तो सिचुएशन रिपीट नहीं होती, लेकिन थॉट पैटर्न रिपीट होता जाता, एंड देन एज विल बी माई थॉट्स, सो विल बी माई डेस्टिनी. तो जो थॉट्स फिर मैं क्रिएट करूँगी, फिर मैं उन लोगों के सामने मिलूँगी, फिर उनको वो एनर्जी मैं भेजूँगी, वो एनर्जी मेरे थ्रू जाएगी, कोई एनर्जी मुझे वापस आएगी, एंड देन आई से देखा उन्होंने फिर से वो किया, उन्होंने वो नहीं किया, मैंने ऑलरेडी वो पास्ट को लिया, फिर से क्रिएट किया, वो एनर्जी भेजी.
0: एक्चुअली मैं वेट कर रही होती हूँ कि ये कब होगा और कब.
1: आई रीअफर्म माय बिलीफ सिस्टर.
0: और सीन के सीन पूरे वैसे के वैसे ही होते. हमारे कई बार मतलब रिलेशनशिप्स में जो फाइट्स होती हैं या ब्रदर सिस्टर्स की भी जो फाइट है, उसमें वही शब्द, सेम सिनेरियो भी वही आता है, शब्द भी वही आते हैं,
1: क्योंकि वो बहुत बार यहाँ चलता है
0: और हमें पता होता है कि इसके बाद आगे भी क्या होगा,
1: क्योंकि इतनी बार वो टेप को इतनी बार रिवाइंड कर लिया होता है कि जैसे इट्स लाइक अ मूवी. अगर आपके पास कोई मूवी की डीवीडी है और आपने वो मूवी 8-10 बार देख ली है, अब 11वीं बार चलाओ उस मूवी को,
0: कई बार तो रुक जाती है मशीन.
1: नहीं,
0: हम तो
1: नो इट ना, आपको हर सीन और हर डायलॉग पहले ही पता है. सिमिलरली एक पर्टिकुलर सीन हुआ, हम उसको बार बार, हम उस सीन, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम उस सीन को बार बार इधर क्रिएट करते, और फिर हम यहाँ भी नहीं क्रिएट करते, हम इतने सारे लोगों के साथ उसको डिस्कस करते, तो हमने वो सीन कितनी बार क्रिएट किया. तो वी हैव द पावर कि हम उस हर्ट वाले सीन को भी बार बार क्रिएट करते, जितनी बार क्रिएट करते हम उसको अपना प्रेजेंट बनाते, और जो हमारा प्रेजेंट बनेगा दैट विल देन इन्फ्लुएंस माय फ्यूचर. तो एक्चुअली अगर हम देखें तो पास्ट जितनी बार हम रिवाइज करते हैं उसको, इवन लाइक कल आपके साथ मेरा ये हुआ, जितनी बार मैं उसको रिवाइज करती हूँ इट विल ऑलवेज बी लिटिल लिटिल डिफरेंट. कुछ कुछ कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ एक रिविजन कर रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा तो वो चेंज होता जाएगा, उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा.
0: तो वो मेरा कलर भी तो उसमें ऐड होता जाएगा, मेरा अपना इमेजिनेशन.
1: मैं जितने लोगों के साथ बात करूंगी उस बारे में, मेरी इंटेंशन, मेरी भावना उसमें ऐड होती जाएगी. तो एक्चुअली हर बार जब हम रिपीट करते उसको, इट्स नॉट दैट आई एम रिपीटिंग द पास्ट, इट्स एवरी टाइम आई एम क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंट, बिकॉज एवरी टाइम आई रिपीट इट्स डिफरेंट फ्रॉम what actually
0: the original, yes,
1: it's different from the original. So if we look at it this way, to for past ka to koi concept hi nahi hai. Jo bita, jab usko dusri bar varnan kiya, wo exact nahi hota hai. So actually this is a new present. I'm not talking about the past.
0: Actually.
1: Let's be in the present.
0: I made it a present, you know. So why should we make our present based on the past? You know, we can actually, हमारी क्रिएटिविटी यहीं पे खत्म हो जाती है. लेकिन एक शिवानी बात ये रह गई कि past को हर्ट खत्म करने के लिए तो याद करना ही पड़ेगा, या वो हर्ट वहीं रह के छूट गया.
1: हर्ट खत्म होने के लिए अगर याद करेंगे तो वही बात हुई, जितनी बार याद करेंगे तो वो हर्ट उल्टा और क्रिएट होता. तो हम बहुत बार हमने सुना है कि पास्ट को भूल जाओ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे, फॉरगिव एंड फॉरगेट. तो हम कहते फॉरगिव किया, फॉरगेट नहीं होता मेरे से. तो जितनी बार फॉरगेट नहीं हो रहा, हम उसको रिक्रिएट करते. तो यस, इट मे साउंड डिफिकल्ट, इट इज लिटिल चैलेंजिंग, बट सॉल्यूशन इज ओनली दैट कि हमें पास्ट को भूलना पड़ेगा. लेकिन अगर हम ऐसे ही पास्ट को भूलने की कोशिश करते,
0: नहीं,
1: वो नहीं भूला जाता. देखो, घंटा पहले हुई बात वो भूल जाती, और 10 साल पहले हुई बात वो भूलती नहीं. कौन सी बात नहीं भूलती? जिसने यहाँ पर दर्द क्रिएट किया. तो जो हमें एफर्ट करना है वो ये नहीं कि मैं कैसे भूलूं, एफर्ट करना है कि वो जो दर्द मैंने क्रिएट किया उसको मैं हील कर दूं. दर्द हील हो जाएगा, वो बात याद नहीं रहेगी. इट्स लेस टू डू विद द सिचुएशन एंड विद द पीपल, इट्स मोर टू डू विद माय पेन. जब तक वो पेन खत्म नहीं होगा, और वो पेन तब खत्म होगा जब मैं उसको अपने ऊपर लूंगी कि उन्होंने जो किया सो किया, जो बोलना था सो बोला, मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना था, मेरा रिस्पॉन्स तो फिर भी मेरे हाथ में. तो अपने आप से उस तरह से बात करके, अपनी सेल्फ एस्टीम को उन पर नहीं डिपेंडेंट करके अपने हाथ में लेकर, जब हम अपने आप को हील कर लेते, देन पास्ट इज फॉरगॉटन. लेकिन जब तक वो हील नहीं होगा, एंड आप सोचे आई फॉरगेट द पास्ट, आई लेट गो, आई डिलीट, इट जस्ट कम्स बैक.
0: और एक्चुअली अगर हम देखें भी, हमें वो पास्ट याद भी क्यों आता है, क्योंकि जब हमारे प्रेजेंट में कोई पेन आती है, हमें एकदम से वो ट्रिगर होता है, अदरवाइज थोड़ा याद आ रहा
1: होता है. बट देन दैट मींस इट इज ऑन द टॉप लेयर ऑफ द माइंड. सी, अगर वो फिनिश हो गया, अगर वो हर्ट हील हो गई, देन इट्स ऑफ द डिस्क, इट्स नो मोर देयर. अब आपने कहा, अब जब भी पेन क्रिएट होता तब मुझे वो क्यों याद आता? क्योंकि वहां भी पेन है, यहाँ भी अभी पेन क्रिएट हुआ, तो क्या हुआ, वो तुरंत याद आया. लेकिन जब वो पेन आपका हील हो जाएगा, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, कोई झगड़ा हुआ फैमिली के अंदर, कोई यू नो बहुत भाई बहनों के बीच या हस्बैंड वाइफ, तो हम कहेंगे ये तो बात मुझे जीवन भर याद रहने वाली है. कई बार हम बहुत स्ट्रांगली कहते मैं जीवन भर आपको फॉरगिव नहीं करूंगा. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला
0: हूँ. मैं आपको भी फॉरगिव नहीं करूंगा,
1: मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला हूँ. सो कितनी देर रहना है और कितनी जल्दी भूलना है, ये कैपेसिटी हमारी अपनी है. आपको चाहिए आप 1 साल दर्द में रहें, आप 10 साल रहें, या आप 10 मिनट में उसको फिनिश करें, जितना हम फिर अपने ऊपर वर्क करते वो टाइम गैप कम होता जाएगा. इट्स ऑल अबाउट जितना मैं अपने अंदर वो ताकत भरती जाऊं, वो टाइम जो मुझे लगेगा अपने आप को हील करने का वो कम होता जाएगा. जितना वो कम होता जाएगा, पास्ट विल बी देन फॉरगॉटन.
0: इनफैक्ट अमेजिंग है, लेकिन इसको अगेन हमें एक्सपेरिमेंट करके करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दर्द इतनी बार रिपीट हो चुके होते हैं कि वो लगते हैं कि वो ऐसे डिलीट कैसे होंगे. इनफैक्ट एक और बड़ा मेजर इशू है जिसको शायद हम अगली कड़ी में ज़्यादा ले पाएंगे, कि डेथ ऑफ माई वेरी नियर वन, दैट पेन, उसको तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक कौन सा ऐसा थॉट है जो, क्योंकि उसमें किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जा सकता, यू नो, कि कई बार तो मैं इस पे ये करके, ये दूसरे सिचुएशन या किसी के साथ, तो उस पे भी हम बात करना चाहेंगे अपनी अगली कड़ी में. तो अगर आपके पास कोई सवाल आता है, कोई मन में बात उठ रही है, कोई इसी से जुड़ी कोई और सजेशन भी है, या कोई और बातें हैं जो आपके हैप्पीनेस इंडेक्स को कम करती हैं या उसे स्टेबल नहीं रहने देती, आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. Awakening with Brahma Kumaris में आज बहुत बड़ी बात हमने आज चैलेंज की है, उसको समझा है, अब उस पर काम करना बाकी है. और ऐसे में मेडिटेशन जो है वो बहुत मदद करती है. सिस्टर शिवानी, कुछ लम्हा हम चाहेंगे कि उन पर रिफ्लेक्ट कर पाए कि कैसे वर्क करना है.
1: लेट्स सिट कंफर्टेबली. बहुत कुछ पकड़ कर रखा था आज तक, परिस्थितियां, लोगों के व्यवहार, जो आज दिन तक समझा, लोगों का दिया हुआ दर्द, ये सब कुछ मैंने पकड़ कर रखा था. और बार बार स्मृति में लाते ही मैं आज भी उस दर्द का अनुभव कर सकती. आज इस क्षण अपने आप से प्रतिज्ञा करते कि हम अब अपने आप को और दर्द नहीं देंगे. मेरे अंदर वो शक्ति है. आई एम दैट पावरफुल बींग विच कैन स्टे स्टेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग आउटसाइड. दर्द मुझे कोई और नहीं देता, दर्द तो मैं खुद ही क्रिएट करती. जैसे ही ये स्मृति आती तो फिर फॉरगिव दूसरों को नहीं, लेकिन फॉरगिव अपने आप को, क्योंकि हमने खुद को दर्द दिया. आज अपने आप को ये याद दिलाएं कि अपने मन की स्थिति हमारे अपने हाथ में है. एंड वो सब जिन बातों को पकड़ के रखा था उन्हें छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा जब ये याद रहेगा कि उन्होंने दर्द नहीं दिया. आई कैन लेट देम गो. ट्राई एंड सी ईच वन लीविंग दैट स्पेस ऑफ माय माइंड. लेट देम गो so that I can be free and powerful. Om Shanti.
0: Om Shanti. Thank you so much. But जैसे कि हमने ये realize किया कि खुशी का जो thought है, खुशी की जो feeling है, वो भी मैं create कर रही हूँ, मैं खुद ही create कर रही हूँ. तो इसका मतलब तो दर्द भी मैं खुद ही create कर रही हूँ. तो let go करना ही पड़ेगा. मुझे खुद ही उसे delete करना है. Again, ये करना मुझे है, लेकिन ये मुझे बहुत बड़ी शक्ति भी देता है. तो उस शक्ति को हम क्यों जाने दें, हमारे अपने हाथ में है. एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, हमारे साथ शेयर करें. आज इतना ही. अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे शांति दीदी के नजर से विनोबा, इस विषय पर उनका साक्षात्कार।
1: प्रेम पंथ अहिंसा का।
2: मेरा नाम है शांति कृपलानी, मैं मूल नासिक की, तो नासिक में उनके मित्र रहते थे। मैंने उनको लिखा कि अभी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, आप तो संत बन गए, मेरी भी इच्छा है मैं संत बनूं, मैं ब्रह्मचर्य से रहूं, तो आपके पास कैसे आऊं? तो उन्होंने तुरंत मुझे पत्र लिखा, तुम चिंता मत करो, अपने पिताजी के साथ आ जाओ। अब कहाँ नासिक और कहाँ कलकत्ता, लेकिन फिर भी गई उनके पास और उन्होंने बहुत प्यार दिया और फिर कहा तुम्हारे जैसी लड़कियाँ तो मुझे चाहिए, अभी तुम अपना घर छोड़ दो या मेरे पास आ जाओ। लेकिन मेरी उम्र उस समय छोटी थी, 16 साल के, और ग्रेजुएट हुई थी तो आगे का पढ़ना था, तो मैंने कहा मेरी इच्छा तो है पढ़ने की, लेकिन कॉलेज में जाऊंगी तो बुरा हाल होगा, इसलिए कॉलेज में नहीं, मैं भी नहीं गया, तू भी नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या करना है? तो फिर क्या कहे, वहाँ नासिक में ही उन्होंने मुझे, इनका पोतनी दोस्त रहता था, उनको कहा इनको मराठी सिखाओ, गीता ही सिखाओ मेरी, तो उन्होंने मुझे गीता ही सिखाई मराठी में, जाती थी उनके घर पर और हमारी दोस्ती बढ़ती गई। और फिर 57 में मैं उनके पास आई और उन्होंने कहा तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारे लिए जैसा भी होगा वह सब कुछ करूँगा। तो मेरे पिताजी ने कहा भाई अभी छोटी बच्ची है, उसको क्या पता चलता है ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसलिए उसको मत लो। उन्होंने कहा देखो मैं छोटा बच्चा था 20-10 साल का, तो मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और आज मैं संत बना, अभी ये 15 साल के मैं कहती हूँ मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेती हूँ तो ये मीरा बनेगी, चलो अब बताओ क्या कहें। मेरे पिताजी चुप हो गए और कहा आप जैसा कहेंगे वैसे, आप तो संत हैं। तो उसके साथ फिर 57 में यहाँ आई, फिर ये ब्रह्म विद्या मंदिर 59 में हुआ और यूँ करते उनसे हमारे जुड़ते गए और आज कितने साल हो गए, 55 से भी ज़्यादा साल हो गए, तो उनके साथ ऐसे जुड़ते गए थे और उन्होंने हमारे लिए फिर बहुत किया, फिर संस्कृत सिखाना, ब्रह्मसूत्र सिखाना, उपनिषद सिखाना, वो सारा काम आध्यात्म सिखाने का काम वही करते थे, तो उनके लिए हमारे मन में एक ये था यहाँ ब्रह्म।

ना, और मिलजुल करके रहते हैं, ट्रस्ट बनाया और संपत्ति रखी और सब मिल करके आज समय के इतना सुंदर बन गया है। 10 ऊपर गई तो 10 नीचे आ गई, ऐसे आना जाना होता रहता, कुछ मर जाते कुछ नहीं पैदा होती है, लेकिन आश्रम बहुत अच्छा चला। और बहनें मिल करके जो उनकी इच्छा थी वो ऐसा लगता है कि पूरी होने वाली है, होकर रही, इतनी मेहनत की। वो कहते थे प्राइम मिनिस्टर बनना आसान है लेकिन संत बनना कठिन है। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी थी और इंदिरा जी आती है, लेकिन मुझे इंदिरा जी जैसे प्राइम मिनिस्टर को नहीं बनाना है, मुझे तुम्हें संत बनाना है। शंकराचार्य कैसे थे, देहातीत अवस्था थी उनकी, जैसे मैं हूँ, सारे विश्व को छोड़ करके ये कहते हैं कि जग तो झूठा है, संसार सब दिखावा है, असली तो आत्मा है। तो उसको जो पहचान थी, उसकी जो ब्रह्म विद्या थी, ये विश्व माते घर ऐसे मते चरा चीज तरह किम बहुना चरा चरा अपन अपन झाला, ही जी स्थिति आए ही तुम ती झाली पाहिजे, तुम्हारी होनी चाहिए और ऐसी मेरी इच्छा है, इसलिए मैं कुछ कोशिश करता हूँ। मरूँगा तो भी ऊपर नहीं रहूँगा, उतर आऊँगा और तुम बहनों को मैं वो शिक्षा दिशा रहूँगा। और आए तो आप पूछेंगे अब आए क्या, देह रूप में तो नहीं आए, लेकिन हृदय रूप से हमें महसूस होता है कि हाँ है और वो सारा काम कर रहे हैं। भूदान में वो जब यात्रा करते थे ना, जैसे केरल में गए तो मैं केरल में गई, वो पंजाब में गए तो वहाँ जाती थी, एक महीना दो महीना रहती थी और फिर चल जाती, रहती यहाँ थी, लेकिन हर साल जाती थी। केरल में गए, पंजाब में गए, महाराष्ट्र में गए, फिर और कहाँ गए, जगह जगह जहाँ जहाँ वो जाते थे ना पहुँच जाती थी। तो पंजाब में गई तो मैंने कहा अब कैसा होगा, कैसा क्या होगा, मैं बैठा हूँ ना, और फिर सारी व्यवस्था वो यात्रा की करते। तो उनके साथ हम भी पैदल चलते थे, 20-20 मील चलते थे, बच्चे थे ना, 20-20 से बच्चे, अच्छा लगता था। तो इस माने में भूदान से जुड़े, फिर सर्वोदय से जुड़े, फिर उनके साहित्य से जुड़े, और फिर जुड़े उनके सारे जो कुछ भी उन्होंने अपने लिखे रखा है, वेदोपनिषद वो सारे पढ़े पढ़ाए। अब मुझे किसी ने कहा उपदेश दो, उपदेश किस पर, उपनिषद पर, हम बोलूँगे क्योंकि सिखाया है, हम पक्के हो गए हैं ना पढ़ करके। तो वो उनकी ताकत हमें मिली जो हमें सारा भारत घुमा लिया। उनके जाने के बाद भी मैं सारा भारत कहीं भी किसी ने बुलाया, मद्रास बुलाया, दिल्ली बुलाया, सब लोग बुलाते रहते हैं, कार्यक्रम करते हैं और हम पहुंच जाते हैं और सबको अच्छी तरह समाधान देते हैं, खुशी होती है लोगों को। कई तो अखबारों में नाम आता है, कहीं तो कहते हैं दोबारा बुलाते हैं, बाकी सब वो ही करते हैं, खर्च भी वो करते हैं, लेना देना भी वो करते हैं, हमको कुछ करना नहीं पता, लेकिन बहुत आदर के साथ लोग बुलाते हैं। तो इसलिए सब दृष्टि से हम जुड़े, इधर किसी से जुड़े हम भूदान से, फिर गोवर्धन मंदिर से, फिर साहित्य से, फिर ब्रह्मविद्या मंदिर से, फिर आखिरी जो बात है संत बनने की, वो बाकी बची है, वो करने का करते रहते हैं। और भगवान की जब इच्छा होगी क्षण में पता नहीं चलेगा कब मन से कहाँ कर कहाँ पहुँचे। तो जो है विश्व चमाज घर ऐसे मती जयाती स्थल के बोना चरा चरा अपन, ये जो उनकी वृत्ति थे वो हमारी इच्छा है कि हम बन जाए। तो कभी कभी मैं इनको भजन सुनाती थी,

मंडल कसो योगिन बने जाऊंगी, योगिन बने जाऊंगी मैं पिया संग नाचूंगी, योगिन बने जाऊंगी मैं पिया नाचूंगी, ओ राम रस पीके मैं तो पिया संग नाचूंगी, ओ राम रस पीके मैं तो पिया संग नाचूंगी, नाचूंगी मैं पिया संग नाच। अरे गली गली ओ गली गली मोले मो गोविंद गुण गाऊंगी, मीरा बन के नाचूंगी। अभी गली गली मोले मोले गोविंद गुण गाऊंगी, गाऊंगी गाऊंगी मैं पिया।

अच्छा वही होता है, लेकिन योग चाहिए मिलने का भी। अब 80 उम्र हो रही है, ऐसी चल रहा है, तो अभी 55 साल तो यहाँ हो गए, सारा भारत देख लिया, सारी दुनिया देख ली, जहाँ जाना था जा लिया। एक विदेश बता जाने का, मैंने कहा मैं पाकिस्तान जाऊँगी, मैं कराची की हूँ, तो बाबा कहते हैं कराची नहीं जाना है, तुमको दिल्ली जाना है। और वही हुआ, दिल्ली पाकिस्तान जाना नहीं हुआ, इच्छा थी जाने की, लेकिन राजीव गांधी की हत्या हो गई, 65 मैं नहीं गई। और दिल्ली में तो कई बार ऐसे वहाँ कार्यक्रम होता रहता है जगह जगह, अभी भी लोग बुलाते हैं, लेकिन अब ताकत नहीं, अब कहते हैं नहीं। इसलिए जहाँ जहाँ जाने का मौका मिला, युवा पीढ़ी के लिए कलयुग नहीं कहना, विज्ञान युग कहना। हमेशा वो हमको यही समझाते, ये विज्ञान का युग है, इसमें हमको सारा अध्यात्म के साथ उसको जोड़ना। विज्ञान को जब अध्यात्म से जोड़ेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, अगर केवल वो अध्यात्म जाएगा तो वो खून खराबी बढ़ेगी। तो ये खून खराबी ना बढ़े, ये जो आत्मीय भाव है ये पैदा हो, ये जो आत्मा का विजय है, वो दोनों को जोड़ने का काम तुम लोगों को करना है। क्या है? विज्ञान और अध्यात्म। हमेशा वो यही कहते थे, कलयुग की बात मत करो, कलयुग तो कभी था ही नहीं, होगा भी नहीं, लेकिन ये जो है विज्ञान और अध्यात्म जब जुड़ जाएगा, विज्ञान जितना जितना आगे बढ़ेगा, वो किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। विज्ञान किसके लिए है? लोक कल्याण, गरीबों की सेवा के लिए, न कि उनको मारने के लिए। लेकिन आतंकवाद क्या करता है? उल्टा करता है। तो ये जो आतंकवाद को उसको मिटाने का काम कौन कर सकता है? वो अध्यात्म। कैसे अध्यात्म करेगा? विनोबा जी का जब डाकू समस्या खड़ी हो गई, तो वो वहाँ थे किसमें, बंड बिहार में, तो उन्होंने कहा कि अब इन डाकुओं का कौन हल करेगा, कौन समझाए? तो नेहरू जी ने कहा कि ये बड़ा प्रश्न है कि हम जितना मारते हैं उतने और बढ़ते हैं, तो मैं क्या करूं? तो कहा नेहरू जी आप मुझे इजाज़त दीजिए, इस डाकुओं के बीच मैं जाऊंगा और मैं उन्हें समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अध्यात्म है। तो नेहरू खुश हो गए, वो PM थे, क्यों ना खुश होंगे, तो वो गए। तो इनको एक महीने का काम दिया, लेकिन क्या बताऊं, वो कहते हैं बाबा कि मैं शांति वहाँ जाता था आगे, तो डाकू खुद होकर आकर मेरे पैर पहुँचते थे। हाँ आप भले हमें अरेस्ट करें, आप मुझे हटाए, ये कर दे, जेल डाले, लेकिन हमें डर नहीं है, हम आपके पास शरण में आ गए हैं, आप हमें बचाइए। तो इतने कितने डाकुओं का परिवर्तन हो गया। तो वो डाकुओं का परिवर्तन कौन करेगा? अध्यात्म। वो विज्ञान भी नहीं करेगा, लेकिन ये बाबा की इच्छा है। और ऐसे उन्होंने अपना काम किया, जैसे सर्वोदय का किया, भूदान का किया, वैसे उन्होंने ये डाक का किया। आपको मालूम है कि नहीं? मालूम नहीं, नहीं ये तो बड़ी अजीब थी। मेरी इच्छा थी मां भी जाऊँ आगरा के पास में उनसे, लेकिन वो 10 लोगों को रखा उन्होंने, ज़्यादा लोगों को नहीं, और 10 लोगों के साथ वो महीना भर करके आए। तो नेहरू खुश हो गए कि ये काम तो ऐसा ही होना चाहिए। तो वो डाकू परिवर्तन का काम, सुनने जैसी बात है। अभी दिन क्या ऐसा है ना, एक रूटीन जीवन बना है। प्रार्थना करते थे पहले, अभी प्रार्थना कभी होती है नहीं होती, उम्र के हिसाब से कभी नींद कम ज़्यादा होती है, लेकिन मन में एक भाव बैठ गया है कि ये जो सारा हमको दिख रहा है वो टेम्पररी है, आज हम हैं कल नहीं हैं। तो इसलिए जीवन का जो रोज खाना पाना होता है, लोग आते हैं मिलते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती तो बाहर भी जाते हैं, सत्संग करते हैं, तो ऐसा जीवन रूटीन हो गया है कि कोई हमको इस प्रकार का बंधन नहीं कि सवेरे उठो के शाम तक ऐसा ऐसा नहीं, पर है फिर भी कि प्रार्थना में मैं प्रार्थना जाती नहीं हूँ। फिर आप कहते जाते नहीं तो कैसा होता? अंदर प्रार्थना ही चलती है कि कभी क्या भगवान के साथ मुझे क्या, मैंने कहा नाचूंगी किसके साथ नाचूंगी, बात करूँगी किसके साथ करूँगी, उठूँगी किसके साथ उठूँगी। तो जब भी कुछ अड़चन भी आती है ना, मुसीबत, तो मैं कहती भगवान अभी तक तुमने चलाया, 60 साल मैंने 80 पूरा किया, अभी आगे तुम देख लो, मेरी तो ताकत नहीं है, तो ऐसा करके फिर निश्चिंत हो जाते। तो ये जो जीवन है, आप कहेंगे कि सवेरे उठ करके दाल रोटी खाते हो? हाँ भाई दाल रोटी तो खानी पड़ेगी ना, खाते हैं, लेकिन वो ऐसा रूटीन हो गया है, 3 बार खाना खाना, 2 बार प्रार्थना करना, और फिर अपना लोगों से मिलना जुलना, और ईश्वर में मन विलीन करना, बस ईश्वर में विलीन अगर एक बार हो जाए ना, फिर कोई कार्यक्रम उसका नहीं रहता है, वो तो जीता है, बस जीना है जीता है, जब मृत्यु आएगा ले जाएगा। उनके दैनंदिन इसी प्रकार होती थी, सवेरे उठते थे 4 बजे, 4:30 बजे प्रार्थना करके फिर सो जाते थे, फिर 6 बजे उठते थे, फिर 6 बजे लोगों के साथ मिलते जुलते थे, मजाक करते थे या
आसन बासन, और उसके बाद फिर भोजन करते थे हमारी तरह 11 बजे, और फिर सो जाते थे, फिर 2 बजे तक नहीं उठते थे। फिर 2 बजे के बाद लोग ऐसे आते थे मिलने के लिए, उनसे मिलते थे, फिर 4 बजे उनको स्नान पानी वगैरह करना है, वो 4 बजे स्नान करते थे, और पानी भी गर्म नहीं करना, चिल्ली पर नहीं करना, धूप का स्नान। तो उस पानी से 4 बजे स्नान करके 5 बजे फिर दूध देते थे, और फिर 6 बजे प्रार्थना करके सो जाते, राम राम। अब मैं जाता हूँ, होंगे तो कल मिलेंगे, नहीं तो राम राम, ऐसा कहते, होंगे तो कल मिलेंगे दादा। 6 बजे वो प्रार्थना करके सो जाते थे, और फिर सवेरे 4 बजे। तो हम कहे आधी रात को क्या करते हैं, आपको इतनी नींद कैसे आएगी? तो कहते हैं मैं ध्यान करता हूँ, 3 बजे उठता हूँ, ध्यान करता हूँ, और ध्यान करते करते फिर ईश्वर का नाम का सो जाता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जब बीमारी हुई ना उनको, हार्ट अटैक आया, तब हमको लगा अब क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन डॉक्टर आ गए, पवनार इसके आ गए, सेवाग्राम के, बम्बई के, दिल्ली के, सब डॉक्टर आए, सब ने कहा इनको ऑपरेशन कराना, मुझे ऑपरेशन नहीं करना है। तो क्या करना? फिर इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने कहा भाई आप थोड़ा सा मत पानी लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अभी तय कर लिया है, मैं उपवास करके मरूँगा, ऑपरेशन नहीं चाहिए मुझे, ऑपरेशन नहीं चाहिए, कोई दवाई नहीं चाहिए, आप मैं पानी दूध भी छोड़ देता हूँ, कल से मैं पानी दूध भी नहीं पीऊँगा, और बिना इसके भगवान का नाम लेकर जाऊँगा। अब हार्ट अटैक था, डॉक्टर डर गए कि ज़्यादा टिकेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे अभी रहना है नहीं, मेरा समय पूरा हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा समय हो गया, अब मुझे जाने दो। और फिर उन्होंने पानी भी छोड़ दिया। जब पानी छोड़ा तो इंदिरा जी ने बहुत समझाया, शायद पानी वगैरह पियो, बहुत लोग आए, बहुत किया, लेकिन किसी के माने नहीं, और 9वें दिन उन्होंने प्राण त्याग दिया। और ऐसे लेटे थे, हमने कहा थोड़ा सा पानी पिए, तकलीफ हो गई, तकलीफ होती थी, बेचैनी होती थी, अरे अंदर पता नहीं क्या क्या होता था, लेकिन पानी नहीं जा। वो 9वें दिन फिर सुबह 9 बजे, 9:30 बजे प्राण त्याग दिया। फिर हमने कहा भगवान अच्छा हुआ बचा लिया, वो गए तो अच्छा हुआ, कितनी तकलीफ हुई होगी। फिर इंदिरा जी ने फ़ोन किया, वो रूस में थी, तो भाई इसको जलाओ मत, मैं अभी आ रही हूँ, मेरा अग्नि उनके सामने करो। तो उनके कारण हम एक दिन रुक गए, और दूसरे दिन 15 तारीख को उनका मृत्यु हुआ, 16 तारीख को वो इंदिरा जी आई, उनके सामने अग्नि संस्कार किया, उन्होंने भी चंदन का रखा, और क्या लाखों लोग सौरा भरा हुआ था। आश्रम नदी के किनारे गए, आश्रम में अंदर करेंगे तो भीड़ होगी तो आश्रम टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं, मेरा नदी पर अग्नि संस्कार, ये खुद कह कर गए। तो उनका अग्नि संस्कार किया, और 80 विसर्जन यहाँ समाधि में थोड़ा सा डाल दिया, और फिर देखते देखते बाबा अनंत में विलीन हो गए, और फिर कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन दिखाई नहीं दिए, शरीर से नहीं दिखाई दिए, मन से तो याद उनकी आती रहती है। ऐसा उनका मृत्यु था, दिनचर्या भी अजीब थी, मृत्यु भी अजीब थी। मुझे कहेंगे तू उपवास करेगी क्या, मैं कहती हूँ नहीं बाबा, मुझे भय लगता है, उपवास से बहुत परेशानी होती है, और पानी भी नहीं पीना, लेकिन इस जिद इनकी कंट्रोल था, निश्चय पावर था कि पानी भी नहीं पीऊँगा, नहीं पिया पानी आखिर तक, तो नहीं पिया, इतना सा सुशीला नैया ने डाला और वो डाल दिया, नहीं पिया पानी। अब उनकी ताकत थी, और वो सहन करके ऊपर चले गए, ऐसे सबको मिले, भाग्य की बात है, संत तो बड़े बहुत अच्छे मिले, अब वैसे संत हम बने, ये भगवान से प्रार्थना है। अब वो हमें पार लगाए, माया नदी पार करना कठिन है, कहते हैं जिंदा रहते हुए बोलना आसान है, लेकिन जब तक वो घटना नहीं घटती है ना, तब तक करना कठिन है। तो इसलिए हम कहते थे, जयंती मनाते थे, जयंती मत मनाओ, मेरी जयंती मनाओ मरने के बाद, क्योंकि फिर मैं पक्का हो जाऊंगा कि तुम लोग कहोगे वो सच्चे संत थे, अभी तुम कहोगे वो झूठा संत था, अब कहोगे तो सच्चा संत है। तो ऐसा वो हमको समझाते थे, तो ऐसा लगता है कि सच मुझे वो सच्चे संत थे, और जयंती मनाते हैं, बाकी जयंती का तो कोई मतलब नहीं है, फिर भी संत हैं। तो ऐसी उनकी जीवन लीला थी, अजब जीवन लीला थी, आँखों से देखी ये बड़ी बात है, ये हमारा भाग्य है, और आगे भाग्य वही है कि ईश्वर में लीन हो जाए, बाकी का भाग्य भी पूरा हो जाएगा, फिर हम भी संत बन जाए तो खत्म हो गई बात, उनकी जो इच्छा थी वो पूरी होगी। तो स्त्री शक्ति में या उनके मन की जो भावना है कि ये आना चाहिए, और वो देखते देखते आएगा, ऐसा लगता है, मैं आशा करती हूँ कि उन्होंने जो संकल्प किया है वो समय पर काम करेगा, और ऐसी स्त्रियाँ निकलेगी। अब तो जगह जगह कितना प्रचार, स्त्रियाँ कितनी आगे आ गई है, तो और आगे आएगी।
और इसमें से भजन तो बहुत बहुत गाते थे ना, मराठी थे ज़्यादातर, भजन बहुत गाते थे, तो अभी कहना मुश्किल है। अनंत रूपे अनंत देशे दे

0: और वो कहते थे सारे विश्व में मुझे बुझारे, वो वाघ में भी, शेर में भी, कुत्ते में भी, बिल्ली में भी, अनंत रूपे अनंत विषय मुझे वही एक दिखता है। शांति, अब मैं इन सब दुनिया से परे हो गया, समझा दे मैं परे, और यही बस तुम लोग भी हो जाओ एक बार कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसी थी।
1: अभी आपने सुना आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में शांति दीदी का साक्षात्कार।
2: यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।

तुमसे मिलकर तुमको है बताना। और आपको बताऊँ, ये गाना बांग्ला में भी दादा ने गाया है। उसका कुछ ऐसा मतलब शब्द है, आई थिंक इसको समझ आएगा।

0: ना।
1: श्रोत्यांनो नमस्कार, तुम्ही ऐकताय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। मी आहे आरजे शुभांगी। आणि श्रोत्यांनो आजच्या खास मुलाखतीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। श्रोत्यांनो आज आपल्यासोबत एक अशी व्यक्ती आहे की ज्यांच्या आवाजाने अनेकांच्या मनात खूप मोठं स्थान निर्माण केलेलं आहे, ज्यांचा आवाज म्हणजे आपण ज्यांना म्हणू शकतो ज्युनियर कुमार सानू। हो श्रोते हो, कुमार सानूच्या आवाजाची झलक असणारे एक अनोखे सिंगर आज आपल्या स्टुडिओमध्ये उपलब्ध झालेले आहेत, ते म्हणजे मिस्टर झाकीर खान। सर, तुमचं खूप खूप स्वागत स्टुडिओमध्ये। रेडिओ मनभवनच्या टीमकडनं मी स्वागत करते।
2: थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच।
1: श्रोते हो, संगीत ही केवळ एक कला नसून तो एक आत्म्याचा स्पर्श असतो, भावनांचा खेळ असतो आणि संगीतातून आपल्या भावना व्यक्त होत असतात। तर असंच प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व ज्यांनी आपल्या गाण्यातून आपल्या व्यक्तिमत्वाचा ठसा उमटवलाय, असे मिस्टर झाकीर खान सर यांच्याशी आज आपण गप्पा करणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत त्यांचा सांगीतिक प्रवास। तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, आर जे शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग। सर, तुमच्या या प्रवासाला सुरुवात कशी झाली ते सांगा ना।
2: एक्चुअल मेरा जन्म अर्ली 90s में हुआ है और उस टाइम जो म्यूजिक का सेनेरियो था वो कोई अलग ही मैजिक था 90s में। उस टाइम रूलिंग आर्टिस्ट माने कुमार सानू जी नए नए आए थे और रेडियो में कैसेट में उनका गाना चलता था।
1: अच्छा।
2: तो बचपन से ही शौक था सुनने का और फिर उनको फॉलो करते करते उनकी टीम में भी रहा, उनके लिए स्क्रैच गाए और बस उनका ऐसा इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर आ गया। मतलब मेरे को एकदम फोनेटिकली हार्ट पे टच होने लगा उनका वॉइस और मैंने ब्लाइंडली उनको फॉलो किया।
1: अच्छा अच्छा।
2: और आज उनका आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है।
1: तुम्ही त्यांना प्रेरणास्थानी मानता?
2: यस यस।
1: सर, तुमच्या बालपणाविषयी पासून सांगा ना मला। तुमचं बालपण, तुम्ही मूळचे कुठले?
2: प्रॉपर जळगाव।
1: प्रॉपर जळगाव, अच्छा। आणि तुम्हाला आवड कधीपासून झाली गाण्याची?
2: मैं 8 या 7-8 साल का था तब से ही मेरे को गाना समझने लगा, तब से ही मैं गाता था। और मेरे को बहुत अच्छे लगते किशोर दा, रफ़ी साहब और नए नए कुमार शानू जी, उदित नारायण जी आए थे।
1: हाँ,
2: तो
1: हाँ।
2: तब से ही गा रहा हूँ।
1: तुमचं पहिलं गाणं किंवा तुमचा पहिला परफॉर्मन्स हा कधी झाला?
2: समथिंग 10-12 साल का मैं रहा।
1: मतलब स्कूल लेवल से आपका स्टार्टिंग था?
2: Yes.
1: या फिर कॉलेज लेवल पे गैदरिंग्स में वगैरह ऐसा सिंगिंग करना ऐसा आपका हैबिट?
2: स्कूल लेवल से ही।
1: अच्छा अच्छा। मग रियाजाची खास प्रॅक्टिस कशी करता तुम्ही? आता गाणं म्हटलं म्हणजे रियाज आलाच, त्यासाठी स्पेशल वेळ?
2: रोज मॉर्निंग में वॉर्म अप करते है, थोड़ा सा पलटा कर लिया, सा लगा लिया,
1: राइट,
2: 30-40 मिनट्स का एक वोकल वॉर्म अप होता है मॉर्निंग में, बस वही करते है। बाकी सब सिंगर्स भी वही करते है। हमने दादा को रियाज करते देखा, शानू दा को, उसी को फॉलो करते करते मैं भी वैसे ही करता हूँ। सिंगर को उतना तो करना ही चाहिए।
1: जी जरूर जरूर। इसी मौके पे कुमार सानू दा का एक कोई सा गाना आपके आवाज में सुनना चाहेंगे हम लोग।
2: जी जरूर।

0: राजन।
1: थँक यू, सुपर्ब सुपर्ब सर। खरंच असं वाटत होतं की सानुदास गात आहेत समोर।
0: थँक्यू थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच,
1: खूप छान। ट्यून इन एनीवेअर, रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आजपर्यंतचा तुमचा सगळ्यात आवडता परफॉर्मन्स कुठला?
0: अभी एक बताना तो मुश्किल होगा। गाने तो 22,000
1: जो यादगार रहा हो।
0: मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस मैं बताता हूँ। मैंने गाना गाया था, सबसे पहला जब मैंने गाने की शुरुआत की तो वो भी एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग था।
1: अच्छा।
0: जब कोई बात बिगड़ जाए।
1: अरे वाह, वो भी कुमार,
0: वो भी उनका एकदम माइलस्टोन गाना था। और एक गाना है, दिल है मेरा दीवाना।
1: क्या बात है, जब कोई बात की झलक सुनना चाहेंगे हम लोग फिर।

0: थैंक यू.
1: क्या बात है. तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM आरजे शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग. म्हणजे आठवणीत राहिलेला एखादा किस्सा सांगा ना की जो खूप आठवणीत राहिलेला आहे तुमचा, मजेशीर असो गमतीशीर किस्सा असा कुठला घडला तुमच्या आयुष्यात स्टेज शो करत असताना वगैरे.
2: एक्चुअली एक शो किया था मैंने इधर नासिक में, तो उसका थोड़ा सा मेमोरी है. बहुत मतलब लोग क्रेजी होके देख रहे थे, तो लगता है कि सानू ही है. और बहुत अप्रिशिएट किया था. उतना अप्रिशिएशन मेरे को जो सबसे ज़्यादा मिला था वो नासिक में मिला था एक शो में.
1: अच्छा.
2: बहुत क्राउड ने मेरे को वंस मोर बोल के मैंने एटलीस्ट 15 सॉन्ग बैक टू बैक गाए थे. वो मेरा एक अच्छा मेमोरी है अपने करियर का.
1: महाराष्ट्र लेवल पे आप गाना गाते हो और कॉर्पोरेट इवेंट्स में भी आप सिंगिंग शोज करते हो,
2: थिएटर शो, कॉर्पोरेट शो,
1: उसके लिए आपको अवार्ड्स वगैरह भी मिले होंगे.
2: हाँ, मिले.
1: उनके बारे में बताइए कुछ.
2: बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे सप्तरंग चैनल के लिए मैंने गाया है. बहुत सारे इवेंट्स उनके होते हुए पंकज.
1: हाँ.
2: जी का सर.
1: अच्छा.
2: बहुत अच्छे अच्छे इवेंट करते हैं. रिसेंटली अभी आगे एक इवेंट है 7 तारीख को, इवन उसमें भी मैं गा रहा हूँ.
1: क्या बात है.
2: और बहुत अच्छा थीम है गीत सरगम. और वैसे बहुत सारे अवार्ड है, खानदेश भूषण है.
1: अच्छा.
2: निफ है, नासिक इंटरनेशनल फेस्टिवल, दादा साहेब फाल्के का फेस्टिवल होता है, उसमें मेरे को अवार्ड मिला है. और बॉम्बे में 2-3 अवार्ड मिले.
1: क्या बात है.
2: अभी
1: बहुत
2: रिकॉल नहीं हो रहा है, बहुत सारे अवार्ड है.
1: और आपका जो एल्बम सॉन्ग आया था मैंने सुना है, हाँ तू है.
2: हाँ, यस.
1: उसका एक्सपीरियंस कैसा था.
2: बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने बॉम्बे में काम करने से पता चलता है कि एक्सपीरियंस धीरे धीरे पहले तो नहीं था. फिर बॉम्बे जाके काम किए, क्योंकि ये टाउन अपना थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो बॉम्बे जाके वो एल्बम किया था. और मेरे साथ गाया है जो वर्ल्ड टूर शानुदा के साथ उनकी को सिंगर है रचना चोपड़ा जी, उन्होंने गाया था. और बिल्कुल 90s का वाइब है गाने में. और गाना बहुत ही मेलेडियस गाना था. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, नया था खुद का गाना गाने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा था और लोगों ने उसको बहुत प्रोत्साहन दिया था.
1: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. अभी जो कल्चर है यूथ जो है आजकल की, ये वेस्टर्न सॉन्ग्स या वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ ज्यादा उनका लगाव दिखता है.
2: yes, yes.
1: तो उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए हमें क्या करना चाहिए.
2: एक्चुअल क्या है, जड़े जो होती है, रूट्स जो होती है, वो तो क्लासिकल ही है. आप कितना भी आप क्लासिकल गाने के बाद आप लाइट म्यूजिक गाइए, आप वेस्टर्न गाइए, आप लैटिन गाइए, आप व्हाट एवर इट इज, आप कुछ भी गा सकते हैं. बट रूट्स हमारी जो है वो
1: क्लासिकल
2: होना ही चाहिए. बट आज के जो सॉन्ग है मैं उसको बुरा नहीं बोलता, बट उसमें मुझे बताइए आप सोल किधर है, सोल कहाँ है. अभी के गाने कैसे होते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं. 90s में जब हम गाने, इसीलिए 90s का इरा सुपर हिट है, ताकि वो जो सॉन्ग है, वो जो डेकेड था,
1: वो अलग ही नशा है.
2: वो एक नशा है, जो 90s में जिसका जन्म हुआ है वो चीज को वो इमेजिन कर सकता है. लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत शो में टीनेज भी आते हैं, जो टीनेजर होते हैं, वो भी हमको ऐसे ही गाने डिमांड करते कि सर आप ये गाना गाइए. मैंने एक गाना गा रहा था, तो सर एक बच्चे ने फरमाइश किया कि दिल कहता है चल उनसे मिल. ये गाना तो लड़का बहुत यंग था, लेकिन आज भी हम ऐसे थोपते, ये वेस्टर्न चल रहा है आजकल, हैमरिंग है. लेकिन देखा जाए तो जो टाइमलेस मेलेडी होता है वो 90s का ही है. और आई थिंक डोंट के मेलेडी रिटर्न वापस आएगा, इसीलिए हम लोग मेलेडी गाने ज्यादा प्रिपेयर करते हैं. 90s का जो मेलेडी वो अभी नहीं है,
1: अभी नहीं है सच में
2: ऐसा है.
1: चलो 90s का आपका फेवरेट सॉन्ग हो जाए फिर.
2: ठीक है.

0: देखिए कितना अच्छा मेलेडी है। सुनने वालों को मैं बता दूं कि मजरू सुल्तानपुरी का लास्ट एल्बम था अनु मलिक जी के साथ,
1: हाँ
0: अकेले हम अकेले तुम,
1: अकेले हम, यस
0: जिन्होंने
1: यस
0: सिक्सटीज में काम
1: जी,
0: किया उन्होंने 90s में ये एल्बम की है,
1: बहुत बढ़िया,
0: और पूरे गाने सुपरहिट, पूरा एल्बम
1: पूरा
0: सुपरहिट।
1: सुपरहिट है आमिर
0: वही
1: खान,
0: हाँ वही नाइन्टीज का वाइब था,
1: यस
0: वो
1: अलग ही है।
0: जादू था, टाइमलेस मेलेडी था।
2: ट्यून के लिए रेडियो मन भवन 90.8 FM, आरजे शुभंग की सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: सिंगर के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ तो गायकाचे गुण दोष काय असले पाहिजे, म्हणजे गायक कसा असावा तुमच्या मते?
0: एक्चुअल मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक के सिंगर्स ने सबसे पहले ईगो नहीं होना चाहिए, माने सक्सेस माइंड में नहीं जाना चाहिए, उससे जमीन पे रहने चाहिए, और अच्छा गायक होने से पहले अच्छा इंसान होना
1: जी
0: ज़रूरी है, और तभी आपके अंदर वो प्योरिटी आएगा, आपके गाने में वो प्योरिटी आएगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: तो काय काय काळजी घेतली पाहिजे गाण्यासाठी गळ्यासाठी?
0: ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग ऐसे माने बोलते हैं कि ये खाने से कुछ होगा, खाने से कुछ नहीं होता, और इतना है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन में रहना चाहिए, और माने फ्राई फूड नहीं खाना चाहिए जिससे गले को इफेक्ट हो,
1: बराबर।
0: थोड़ा सा मॉर्निंग वार्म अप, और मॉर्निंग वार्म अप करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, दिन भर गला आपका ट्यून रहेगा,
1: जी जी जरूर।
0: और थोड़ा सा प्रिकॉशन तो रखना ही पड़ता है।
2: ट्यून इन एनीवेयर, रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: तो आप सिंगिंग करते हो, स्टेज शोज करते हो, तो आपको कौन सा, मतलब अभी कैरियोके सिंगिंग का भी ये चल रहा है, बहुत ट्रेंड
0: यस
1: चल रहा
0: यस
1: है,
0: यस
1: और ऑर्केस्ट्रा पे लाइव सिंगिंग करना,
0: यस यस
1: तो आपके हिसाब से कौन सा बेटर होता है?
0: डिपेंड ऐसे है कि आज जो प्लेटफॉर्म माध्यम बहुत आ गए, पहले उतने माध्यम नहीं थे,
1: बरोबर,
0: बट देखिए फिर वही बात आएंगी कि कराओके में जान नहीं है, माने वो इमोशन नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, जब लाइव म्यूजिशियन जब प्ले करते हो उसके साथ जब सिंगर गाता है, दोनों का जो कोलेबरेशन
1: यस यस,
0: जो होता है
1: कोऑर्डिनेशन प्रॉपर
0: उसमें
1: होता है।
0: उसमें म्यूजिक शावर होता है, एक मैजिक होता है,
1: सही
0: तो
1: है सही है।
0: उसका जो फील है वो एकदम मुझे लगता है
1: लेकिन
0: कि
1: आजकल
0: अच्छा
1: का
0: है।
1: ट्रेंड है हर कोई कराओके पे गाने की कोशिश करता है, भले ही वो उसका स्केल मैच हो या ना हो, लेकिन उसमें वो केयर करना चाहिए कि स्केल परफेक्ट और बीट के साथ।
0: यस यस अभी
1: हाँ
0: लोग
1: हाँ
0: हॉबी से गाते हैं, उनको वो बिगिनर्स होते हैं, उनको ये
1: यस
0: पता नहीं है कि ये गाना किस नोट पे है, इसमें बीट कितना है, 4-4 काउंट है, 4-8 काउंट है, टू टू फोर काउंट है, तो ये सब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेने के बाद ही ये चीज़ें आती है,
1: बराबर।
0: बट मुझे लगता है जो भी काम आप कर रहे हो पहले उसको प्रॉपर सीखो और फिर करो, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा जाएगा, मुझे ऐसे लगता है।
1: तुमच्या आवडीचं गाणं कुठलं आहे सगळ्यात जास्त?
0: मैं एक गाना बताने से क्या हो, मैं बहुत सारा जो भी गाया था फेवरेट ही है,
1: सही है,
0: बट जो भी गाया वो फेवरेट ही गाया मैंने अभी
1: क्या बात है।
0: तक।
1: अच्छा, नवोदित गायकांना तुम्ही काय सांगाल?
0: यही बोलूँगा कि बस जमीन पे रहिए, अच्छा काम करते रहिए, गाते रहिए और सीखिए, बेसिक नॉलेज लीजिए, मोर मोर सुर मोर देन परफेक्ट, रैप आज का जो ट्रेंड है वेस्टर्न वो तो आप करिए, लेकिन क्लासिकल का फाउंडेशन बना के रखिए।
1: बरं, आणि पुन्हा एकदा विचारते की तुमचं यापुढे भविष्यात तुमचे काय स्वप्न आहेत किंवा तुमचा मानस काय आहे की या क्षेत्रात मी असं असं करणार, त्याबद्दल सांगा ना।
0: जब तक जिंदा हो गाते ही रहूंगा। और बहुत अच्छे
1: आणखी
0: अच्छे
1: काही तुमचे प्रोजेक्ट असतील भविष्यातले त्याबद्दल?
0: बिल्कुल है, अभी नेक्स्ट ऑगस्ट में 2-3 एक प्रोजेक्ट है, नदीम श्रवण रिवाइंड 90s बोल के, बहुत अच्छा एक कंसेप्टेड इवेंट है जो जलगांव में हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे बॉम्बे में होते लाइव ऑर्केस्ट्रा, उसी वही वही कल्चर वही माने पैटर्न हम जलगांव में लेके आ रहे हैं, मेरे साथ पंकज कासार सर है सप्तरंग चैनल के, वो कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं जलगांव के लिए कुछ तो भी नया करने के लिए,
1: अच्छी बात है।
0: कराओके से हटके लाइव सिंगिंग।
1: सो बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट,
0: थैंक यू वेरी मच।
2: और ट्यून इन एनीवेयर, रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: और जाते जाते हमें क्या सुनाएंगे अभी आप?

18वीं सदी का सुधार युग। उस युग के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस आदि। उन्होंने अपने अपने प्रयासों से समाज कल्याण का बीड़ा उठाया था। इन महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ने समाज और देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पश्चिमी देशों को भारत की एक नई पहचान मिली। भारतीय ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता से उनका परिचय हुआ और सारा विश्व इस तरुण सन्यासी के प्रति आकर्षित हो गया।

0: आपने 19वीं सदी के भारत और मुख्यतः बंगाल के बारे में भी जाना। हमने सुना वो कितना अशांत युग था, समाज दिशाहीन तथा अंधकारमय था। कुछ समाज सुधारकों ने समाज को कुछ हद तक सुधारा, दिशा दी, परंतु सदियों की रूढ़िवादिता, धर्मांधता तथा कदाचार पर संपूर्ण रूप से विजय पाना संभव न था।
1: उसी अशांत कालखंड में स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। अपने ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति एवं वैदांतिक राष्ट्रवाद से उन्होंने समूचे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दिल जीत लिया। दिशाहीन भारत को एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिला। जाति, प्रांत और भाषाई अंतर को भुलाकर भारतवासियों ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से लोग मुग्ध हुए।
0: ऐसे दिव्य महापुरुषों की जीवन कथा बहुत ही रोचक है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने हजार वर्षों का काम कर दिखलाया था। इतने सारे गुणों से धनी स्वामी विवेकानंद को संस्कार अपने परिवार से मिले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, अतः विवेकानंद को जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता नगरी के उत्तरी भाग में सिमुलिया या शिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उस भवन का जीर्ण द्वार अतीत वैभव का साक्षी बना खड़ा है। दत्त वंश का ऐश्वर्य और ख्याति उनके 12 महीने के 13 उत्सव पर्व का आडंबर उस समय के कलकत्ता के धनी समाज में चर्चा का विषय रहा।
1: कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील राममोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्तों ने नगर में काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। राममोहन दत्त के पुत्र दुर्गाचरण ने उस समय की प्रथानुसार संस्कृत तथा फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजभाषा अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु पिता जैसी धनोपार्जन की प्रवृत्ति उनमें न थी। तत्कालीन धनी संतानों के समान नवीन नागरिक सभ्यता के भोग विलास भी उन्हें आकर्षित न कर सके।
0: ये धर्मानुरागी युवक अवसर और मौका पाते ही धर्म शास्त्रों की चर्चा तथा सत्संग किया करता था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए हिंदी भाषी वेदांती साधुओं से प्रभावित होकर दुर्गाचरण ने 25 वर्ष की उम्र में ही सारा ऐश्वर्य और सम्मान त्याग कर संन्यास ले लिया।
1: सन्यासियों के नियमानुसार 12 वर्ष के बाद दुर्गाचरण एक बार अपने जन्म स्थान का दर्शन करने आए थे और अपने एकमात्र पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके आगमन के एक वर्ष पहले ही उनकी पत्नी यानी विश्वनाथ की माता का निधन हो गया था। सन्यासी पुत्र विश्वनाथ ही सन्यासी विवेकानंद के पिता थे।
0: विश्वनाथ ने अपने दादा राममोहन का अनुसरण कर वकालत करना प्रारंभ किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वकालत में व्यस्त रहते हुए भी अध्ययन में उनका प्रबल अनुराग था। वे फारसी जानते थे, हाफिज की कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि पढ़ने के कारण धार्मिक कट्टरता उनमें ना थी। कई ऊंचे खानदान के मुस्लिम उनके मुवक्किल थे तथा लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों की यात्रा करने के कारण वे उस समय के अनेक खानदानी मुस्लिम परिवारों के संपर्क में आ चुके थे, अतः वे उनके रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनकी पाबंदी भी करते थे। बाइबल के अध्ययन के कारण वे ईसाई धर्म के भी प्रेमी थे, अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे काफी धनोपार्जन करते थे और खर्च भी वैसा ही करते थे। रिश्तेदारों दोस्तों का आदर सत्कार करना तथा ठाट बाट से रहना वे पसंद करते थे। उनके घर में अनेक आश्रित पलते थे और उस विशाल भवन में किसी चीज की कमी ना थी।
1: परंतु विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक पारंपरिक महिला थी। इस बुद्धिमती कुशल गृहिणी की देखरेख में उनके विराट परिवार के सभी कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न होते थे। वे बंगला पढ़ना लिखना भली भांति जानती थी। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत आदि का नियमित पाठ करती और साथ ही अपने पति पुत्र के साथ चर्चा करके तत्कालीन विचारधारा से भी परिचित रहती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें श्रद्धा करते थे। वो मीठा बोलने वाली गंभीर धर्म परायणा महिला प्रतिदिन शिव पूजा करती थी।
0: भुवनेश्वरी देवी के मन में एक दुख था। दो कन्याओं की माता तो वे थीं, पर उनका कोई पुत्र ना था। पुत्र मुख देखने की लालसा ने उन्हें धीरे धीरे बहुत ही व्याकुल कर डाला। वे प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर में प्रार्थना करती और शिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर व्रतों का पालन करती।

कैलाशपति भुजंगेश्वराय नमः। हे देवाधिदेव, मैं भक्ति पूर्वक तन मन से तुम्हारी सेवा में रत हूँ। सभी कठोर व्रतों का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। तुमसे आज्ञा या आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई भी काम नहीं करती प्रभु। फिर तुम्हारी कृपा कब होगी? कब आप प्रसन्न होंगे? कब मेरी गोद में एक पुत्र आएगा प्रभु? कब तुम्हारी दया होगी? बोलो बोलो ना, कब होगी दया? कब कब होगी तुम्हारी दया?

0: इतने व्रत उपवास पूजा अर्चना के बाद भी उनके मन को शांति न हुई। शिव को और भी अधिक तुष्ट करने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाली एक रिश्तेदार महिला को पत्र लिखा।
1: आपको तो मालूम है कि मैं शिव की पूजा नियमित रूप से करती हूँ, उनके नाम का व्रत उपवास भी करती हूँ, पर उनकी कृपा मुझ पर आज तक नहीं हुई। मेरी पुत्र कामना अधूरी ही रह गई। आप तो भाग्यवती हैं, शिव की नगरी में ही निवास करती हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हर दिन मेरी ओर से बाबा विश्वेश्वर के मंदिर में पुत्र कामना करते हुए पूजा एवं होम यज्ञ आदि की व्यवस्था कर दें। मुझे आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगी।
2: ये जानकर कि उनकी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ हो रहा है, माता भुवनेश्वरी प्रफुल्लित और आश्वस्त हुई। वे शिव अर्चना में और भी ज्यादा डूब गईं। ग्रह देवता शिव मंदिर में ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होने लगा।
0: एक दिन प्रातः काल शिव अर्चना के बाद वे ध्यान मग्न हो गईं। परिवार के लोगों ने और दास दासियों ने उन्हें कई बार आवाज दी, पर वे सब कुछ भूल कर बेसुध बैठी रहीं। सारा दिन बीत गया, सांझ हो आई। पति विश्वनाथ के अदालत से लौटने पर उन्हें ये समाचार मिला। वे पत्नी से बेहद प्यार करते थे, व्याकुल होकर पूजा कक्ष में आए और भुवनेश्वरी को आवाज दी।
3: भुवन, ओ भुवन, भुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुना है सुबह से यहां ऐसी ही बैठी हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भुवन, तुम सुन रही हो ना? मेरी ओर देखो, जवाब दो भुवन, भुवन।
0: भुवनेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहीं पर थककर सो गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने या जगाने की। सूर्योदय के समय अचानक घर वालों की नींद खुली। उन्हें पूजा घर से घंटा बजने और मंत्रोच्चार की आवाज आई। सब दौड़ते हुए वहां जाकर एकत्रित हुए। भुवनेश्वरी होश में आ गई थी और जोर जोर से मंत्र पढ़कर शिव को प्रणाम कर रही थी।
1: हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय, तुमने मुझे ये क्या दिखाया, क्या दिखाया? क्या ये निरा सपना था या सच का पूर्वाभास? कहो देव, कहो ना। अरे अरे, सुना तुमने? तुम लोगों ने सुना? मेरे इतने दिनों की तपस्या पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, शिव ने मुझ पर दया की है। हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे प्रभु।
3: भुवन, भुवन, शांत हो जाओ, सब ठीक तो है ना? क्या देखा तुमने, कहो, इतनी खुश क्यों हो, कहो तो।
1: मैं क्या कहूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने ये कैसा सपना देखा? हाँ,
3: क्या देखा तुमने, कहो भुवन।
1: ओह, मैंने देखा तुषार धवल पर्वत श्रृंग से कैलाशपति शिव उतर कर आ रहे हैं। हाँ, और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा भुवनेश्वरी। और कहते कहते शिव एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर मेरी गोद में आ गए। हाँ हाँ, वो मेरी गोद में आ गए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, सच। ओह, हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे शिव।
2: हे शिव, हे शंकर कहती हुई वे बारंबार माथा टेकती रहीं। परिवार वाले हतप्रभ रह गए।
0: उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी, पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात। शीत से ठिठुरते हुए नर नारी स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे। इसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33 और 33 सेकंड पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया।

0: आनंद उल्लास और हर्ष से दत्त भवन मुखरित हो उठा। मंगल शंख बजने लगे। बंगाल के हर घर में पौष पर्व का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। मानो नवजात शिशु को सादर अभ्यर्थना करने प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा।
1: नामकरण का दिन। बालक की आकृति बहुत कुछ उसके सन्यासी पितामह की तरह देखकर परिवार के कुछ लोगों ने शिशु का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता ने अपने स्वप्न को स्मरण कर कहा,
2: जी इसका नाम शिव के नाम पर वीरेश्वर रखा जाए। ठीक है, वे ही तो शिशु का रूप धरकर मेरे घर आए हैं। ये मेरा शिव, मेरा शंभु, मेरा महेश और मेरा शंकर है, मेरा बच्चा।
0: सभी ने उनका कहना मान लिया। वे उसे वीरेश्वर से वीरे और अंततः बिले कहने लगे। अंत में अन्नप्राशन के समय बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ, और भविष्य में यह बालक नरेंद्रनाथ या नरेन नाम से ही परिचित हुआ।
1: बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट थे। उनके उधम से घरवाले हमेशा परेशान रहते थे। वे माँ को बहुत तंग करते थे। एक दिन बालक नरेन आंगन में दौड़ दौड़ कर माँ को सता रहा था।
2: बिले, अरे ओ बिले, आना इधर आ, बात सुन मेरी। बिले, ओहो आना, कपड़े बदल ले। ओहो
3: नहीं नहीं बदलूंगा कपड़े, लो पकड़ो मुझे।
2: अरे सुन ना,
3: नहीं पकड़ पाई ना, मैं अभी पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास।
2: ठहर, पकड़ती हूँ तुझे। बस ये पकड़ लिया। बोल अब कहाँ जाएगा। हाँ ठहर ठहर, मैं मजा चखाती हूँ, नहीं सुनेगा ना मेरी बात। हाँ नहीं सुनेगा, चल चल आ इधर आ, ये इधर आ इधर आ, ये ले ये ले, ये शिव, ओ शिव, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, ले। अब तेरा माथा कुछ ठंडा हुआ ना, चल चल अब अंदर चल, चल बेटा सर पोंछ दू, फिर कपड़े बदल लेना। ओह शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर।
1: पिता विश्वनाथ बरामदे में खड़े होकर माँ बेटे का ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा,
4: भुवन तुम क्यों हमेशा बिले के पीछे पड़ी रहती हो, अरे खेलने दो ना उसे। देखो ना, नाहक उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया, अगर उसे जुखाम हो गया तो जाओ जल्दी से पहुंचो उसका सर।
2: हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है, बेटे की शरारत तुम्हें दिखती ही नहीं। अरे देखो तो, दौड़ा दौड़ा कर मेरा तो दम निकाल दिया, और उसे भिगोने में देखो ना, ये देखो मैं पूरी तरह भीग गई। अरे बिले चल ना, चल जल्दी चल चल।
4: पर तुमने दोबारा उसे नहलाया क्यों, और वो भी ठंडे पानी से।
2: क्या आप नहीं जानते कि आशुतोष शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, और मेरा बिले भी तो शिव का ही अंश है, इसलिए जब मैं इसे किसी भी तरह से शांत नहीं कर पाती तो ठंडा पानी डालकर शिव शिव की जाप करती हूँ, और ये भी शांत हो जाता है।
4: तुम माँ बेटे की महिमा अपरंपार है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बच्चा है अभी, शरारत तो करेगा ही।
2: ए देखो जी, वकालत करते हो उसी को संभालो, हम माँ बेटे के बीच ना आना, ठीक है। ए, ए, ए, अरे अरे अब फिर भाग गया, अरे देखो तो, ओहो फिर भाग गया बिले।
4: लो संभालो अब।
2: ओ माँ गो माँ, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गई हूँ। ओ अरे अरे, ओ राधा शामू, अरे देख तो किधर भाग गया, वो भाग रहा है, वो जा पकड़ लिया ना, ले आ इधर ले आ। मांगो माँ, महादेव शिव ने स्वयं ना आकर जाने कहां से एक भूत को भेज दिया है, सबको परेशान कर रखा है। ओह अरे तू तो फिर से रोने लगा, देखा देखा जी अपने लाडले की करामत। हाँ हे देख देख बिले, अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा ना तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। हाँ
3: सच कह रही हो ना माँ, शिव जी मुझे कैलाश नहीं आने देंगे तो मैं नंदी बैल की सवारी कैसे करूंगा।
2: अच्छा बच्चा बनो बेटा, तो शिव जी तुझे खुद वहां ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, समझा। अच्छा अच्छा अब चल, तो चल भीगे कपड़े बदल ले। हाँ चल चल बेटा चल चल, आजा चल चल।
4: तुम दोनों माँ बेटे की बातें तुम दोनों ही जानो, और जाने तुम्हारे शिव जी। भाई मैं तो चला। नरेंद्रनाथ सबके प्रिय थे, मोहल्ले के धनी निर्धन सभी परिवारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। हर घर में आना जाना उनके परिवार जनों को पसंद ना था। एक दिन
5: ए ए ए बिले, क्यों रे बिले, तू कहाँ गया था, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही थी।
3: अरे मैं तो देवू के घर गया था, आपको मालूम नहीं पड़ा क्या, आज देवू के दादाजी गुजर गए। देवू बहुत रो रहा था, उसी के साथ बैठा था।
5: हे भगवान, इस लड़के को जात पात का कोई ध्यान नहीं है, तूने देवू के दादाजी के शव को छुआ तो नहीं। हे ईश्वर,
3: छुआ नहीं, सब दादाजी को आखिरी बार प्रणाम कर रहे थे, सो मैंने भी किया।
5: तूने प्रणाम किया, चल आज तेरी अच्छी पिटाई होगी, चल माँ के पास।
3: आप मुझे डांट क्यों रहे हैं, देवू मेरा दोस्त है, उसके दादाजी को मैं भी दादाजी कहता था, और दादाजी को प्रणाम करने में क्या बुराई है, माँ ही तो कहती है बड़ों का आदर करना चाहिए।
5: अरे अरे अरे अरे अरे, इस मलेच्छु को कौन समझाए, चल चल तू तो अंदर चल, फिर देखना क्या होता है तेरा। ए ए ए ए, किसी चीज को छूना मत, पहले नहा ले, चल पहले नहा।
3: ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, आपको छू दिया, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, आप तो वैसे ही हैं।
5: हाय हाय हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया, मैं तो नहा धोकर घर से बाहर जा रहा था, छू दिया ना, अब फिर से नहाना पड़ेगा, राम राम राम।
3: तो जाइए फिर से नहाइए।
5: राम राम राम राम राम।
0: और नरेंद्र हंसते हुए अंदर चले गए। चाचा जी के गुस्से का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं।

0: नरेंद्र बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब और शरारती थे, पर उनकी बाल सुलभ शरारतों से अधिकतर लोगों का मनोरंजन होता था। उनकी मजेदार बोलचाल और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को सुनकर गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनके दोस्त तो नरेंद्र से कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, और नरेंद्र भी मौका मिलते ही कहीं भी मंडली जमा कर बैठ जाते और दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाते। रामायण महाभारत की कथा कहानियां तो सुनाते ही थे, साथ ही अलिफ लैला की कहानियां, ईसप की नीति कथाएं तथा देश विदेश की परिकथाएं भी सुनाया करते थे।
1: नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच न था। अगर कोई कहानी याद न आती तो मनगढ़ंत पात्रों की काल्पनिक कहानियां दोस्तों को सुनाया करते। उनकी काल्पनिक कहानियां भी इतनी मजेदार हुआ करती थीं कि दोस्त यह समझकर भी कि नरेंद्र झूठी कहानियां सुना रहे हैं घंटों मंत्रमुग्ध हो सुनते रहते थे। बचपन से ही उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी।
0: जीवन के आरंभ में ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ झुंड बनाकर क्रीड़ा कौतुक करते समय नरेंद्र ही इन सब आयोजनों के नेता होते। नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था।
1: उन दिनों पाठशाला में मकर संक्रांति के दिन गंगा की वंदना के गीत गाकर गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करने की प्रथा थी। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ बाबू मकर संक्रांति के दिन गुरुजी एवं छात्रों को नई धोती कुर्ता दिया करते थे एवं गुरुजी छात्रों को गाजे बाजे के साथ गंगा पूजा कर आने की अनुमति देते थे।
0: लौट कर आने पर प्रथा अनुसार घर पर बनी मिठाइयां खाने को मिलती थी। नरेंद्र ने पिता से छात्रों के साथ गंगा पूजन की अनुमति मांगी। बाजा गाजा और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे से सहज ही हो गई। अतः गंगा की महिमा गाते हुए बच्चे जुलूस बनाकर गंगा तट पहुंचे। वहां केले के पेड़ के छिलकों से नाव बनाकर उनमें दिया जलाकर रख दिया गया और फूल मालाओं से सजाकर नावों को गंगा जल में बहा दिया गया।
1: छोटे छोटे नाव धीर गति से गंगा में बहने लगी। संध्या के झुरमुट अंधेरे में जगमगाती हुई नाव दियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरों के साथ झूमती हुई सागर की ओर बढ़ चली। बच्चे ढोल मंजीरों के साथ गाते रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापियादास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: श्रोतेहोतच आपण युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद ऐकलात। हा कार्यक्रम स्वराज संस्थान संचालनालय यांच्या सहकार्याने विद्यावाणी सामुदायिक रेडिओवरून प्रसारित करण्यात आला। ऐकत रहा विद्यावाणी 107.4 FM।